FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 37 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने

0: का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। प्रभु जी मैं अरज करूं, मेरो बेड़ो लगाए दे पार।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना एम एस सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, किशोरी अमोनकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: इंसान को परमपिता परमेश्वर में विश्वास करके मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की साधना करनी है तो उसे सांसारिक सुख सुविधा के साधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। इंसान को आत्मचिंतन और मानव सेवा के द्वारा परमात्मा के साक्षात रूप के दर्शन के लिए आत्मशुद्धि करना और आत्मबल पैदा करना परम आवश्यक है। असत्य, आडंबर, छल, कपट, द्वेष, हिंसा और मोह ये बचाव करके ही आत्मशुद्धि संभव हो सकती है। इंसान कभी भी जप, तप, धर्म, कर्म, योग, आसन, वृत्त नियम, नहाने धोने या तिलक छापे से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इन नियमों से इंसान में अहम जरूर बढ़ता है किंतु शांति नहीं मिल सकती। और जब तक इंसान का ज्ञान जागृत नहीं हुआ है तो सतगुरु के मुख से बताए ज्ञान द्वारा परमात्मा को न जान लें तब तक आत्मशांति भी नहीं मिल सकती है। जैसे एक तस्वीर हमें अच्छी लगती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी के साथ साथ उस तस्वीर को बनाने वाले कलाकार की भी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह संसार के हर सुख को बनाने वाले, सुंदर प्रकृति को रचने वाले परमपिता परमात्मा को जानना, उसका विश्वास करना, उसका ध्यान धारण करना ही इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। और वास्तविक लक्ष्य को जानकर उसी के अनुसार

0: सार साधना करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। जीवात्मा और परमात्मा का गहरा संबंध है, जिसको किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। चूंकि आत्मा संसार में शरीर धारण कर लेती है, इससे जीव और जगत का संबंध बनता है। जीवों में मानव को विवेक और बुद्धि का वरदान प्राप्त है, इसलिए मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए और अन्य जीवों पर दया करनी चाहिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है। मानव में आत्मा है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है। हर मानव के अंदर निराकार परमात्मा की ज्योति है, और जो मानव इस ज्योति को धारण करता है, उसको हर मानव में परमात्मा के दर्शन होते हैं। अतः हर मानव को मानव का आदर करना चाहिए, इसको जीवन में अपनाएं और मानव के मन की दूरियां समाप्त कर दें, तो नर पूजा के रूप में नारायण पूजा साकार हो जाएगी। ये सब जानने में इंसान को कठिनाई हो सकती है, तो इसके लिए इंसान को सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सतगुरु द्वारा इंसान का आत्मा और परमात्मा के मर्म को जानने का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मा का मर्म जानने पर एक इंसान दूसरे इंसान को परमात्मा का ही अंश मानकर प्रेम को धारण करे, यही शांति और मोक्ष का साधन है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था सदगुरु महिमा, आलेख खरक सिंह छोकर और वाचन स्वर था राखी कटारा का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था रविंद्र साठे ने, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे श्रोता। विषय रहेगा वैज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन से अधिकतम लाभ। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। सात बजे आप आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का। समाचार आप सुनेंगे 7:18 पर लखनऊ केंद्र से। करके 30 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की होगी। साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। और 9 बजे का समय रहेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम। विषय रहेगा बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां। वार्ताकार डॉक्टर संजीव जैन और भेंट करेंगे ओपी सिंह। नौ बजकर 25 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आप

वो हवा, 9:30 पर गांधी चर्चा। 9:45 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों पर आधारित कार्यक्रम। आज कलाकार सुधीर बोस होंगे। 10 बजे आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 और प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर तेजपाल सिंह। 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण और 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। साथ ही 12:30 पर ब्रजलोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे गिरीश कुमार सहगल। बजकर 15 मिनट पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम बनता लोग। आज चर्चा का विषय रहेगा स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ परिवार और महिलाओं की जिम्मेदारी। साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगे महिलाएं कैसे रखें बच्चों की देखभाल। इस कार्यक्रम में विज्ञान वार्ता भी आप सुनेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारी शक्ति। वार्ताकार रहेंगी डॉक्टर नीता सिंह। 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 1:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम दुधारू पशुओं से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पशुपालक अपने दुधारू पशुओं के अनावश्यक खर्चों में बचत करके एवं अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त करके ही सर्वाधिक लाभ कमा सकते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पशुपालक अपने पशुओं की प्रजनन क्षमता का भरपूर उपयोग करके ही कर सकते हैं। इसके लिए पशुओं का प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहना अति आवश्यक है, जो कि उचित आहार व्यवस्था, व्यक्तिगत देखरेख तथा कुशल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। पशुओं का सही उम्र पर प्रजनन योग्य हो जाना, कम से कम ब्यांत समय अंतराल, खान पान, गर्मी में आए पशु की पहचान, उचित गर्भाधान व्यवस्था, प्रजनन अभिलेखों को तैयार करना तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करके ही आर्थिक लाभ बढ़ाया जा सकता। डेयरी पशुओं में एक बार ब्याने से लेकर दोबारा ब्याने तक के समय को ब्यांत अंतराल कहते हैं। यह गायों में 12 माह तथा भैंसों में 13 माह का होता है। बहुत अधिक दूध देने वाले पशुओं में 14 महीने तक ठीक है। ब्यांत अंतराल को कम रखकर पशुपालक अपने पशु से प्रतिदिन व पूरे जीवन काल में अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दुधारू पशुओं से पूरे ब्यांत के लाभ का 50% प्रथम 100 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। पशु के जीवन में इन दिनों की बढ़ोतरी के लिए ब्याने के बाद शीघ्र गर्भित होना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब पशु प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहेगा। पशुओं के ब्याने के बाद आहार व्यवस्था समुचित होने पर वह शीघ्र गर्मी में आ जाएगा। ऐसे पशुओं को पहचानने के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन, गायों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, उत्तेजित रहना, योनि में सूजन व श्राव होना। भैंसों में एक दूसरे पर चढ़ने की क्रिया नहीं दिखाई देती, किंतु इसमें डोंका दिखते हैं। डोंका यानी दूध दोहने के बाद भी थनों में दूध बना रहता है। गर्मी में आए पशुओं की पहचान नियमित रूप से सुबह या शाम को करनी चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक पशुओं को समय से गर्भित किया जा सके। अच्छी गर्भित दर पाने के लिए सही समय पर अच्छे वीर्य द्वारा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। पशुओं को गर्भित कराने में सुबह शाम का नियम अपनाना चाहिए। सुबह गर्मी में दिखे पशुओं को शाम को और शाम को गर्मी में दिखे पशुओं को सुबह गर्भित कराना चाहिए। जो पशु अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक गर्मी में दिखे उसे 12 से 24 घंटे के अंतराल पर

0: उन्हें गर्भित कराना आवश्यक होता है। गर्भाधान करने के पश्चात जो पशु गर्मी के संभावित समय पर दो बार गर्मी में ना आए, ऐसे पशुओं का गर्भ परीक्षण 60 दिन होने पर अवश्य कराएं। गर्भित न होने पर जांच और उपचार करवाएं। कभी कभी गर्भित पशु भी गर्मी के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, ऐसे पशुओं को पुनः गर्भ परीक्षण करवाएं। पशुओं के प्रजनन संबंधी महत्वपूर्ण दिनांकों को पशुपालक को नोट करके रखना चाहिए, जिससे कि अपेक्षित घटनाओं का पहले से तैयारी व आकलन किया जा सके। पशु के प्रसव के तरीके को नोट करके रखना चाहिए, जिससे कि प्रसव के 50 दिन के अंदर पशु को गर्मी में आ जाना चाहिए एवं 75 से 80 दिन पर कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए। पशु के गर्मी में आने की सभी तारीखों को नोट करके रखना चाहिए, ताकि उसके गर्भित होने अथवा गर्भित न होने पर गर्मी में आने की संभावित समय की जानकारी हो सके। गर्मी में आने में अनियमितता अथवा पहचान में चूक की जानकारी आवश्यक है। पशुओं को गर्भित कराने की दिनांक को नोट करके रखना चाहिए तथा 60 दिन होने पर गर्भ परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। गर्भित न पाए जाने पर जांच व उपचार तथा गर्भित पाए जाने पर प्रसव के संभावित समय से 60 दिन पूर्व से दूध दुहना बंद कर देना चाहिए। पशुओं के आहार तथा आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान आवश्यक है। अब बात आती है पशुओं की आहार व्यवस्था की। दुधारू पशुओं में व्यवस्थित प्रजनन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संतुलित आहार आपूर्ति आवश्यक है, जिससे पशु के दुग्ध उत्पादन हेतु आवश्यक अवयव शरीर में कम न पड़े तथा उच्च दुग्ध उत्पादन के साथ ही पशु गर्मी में भी आ सके। इसके लिए हरा चारा, दाना तथा मिनरल मिक्सर पशु को दिया जाना आवश्यक है। प्रसव काल निकट आने पर पशु को पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति में कमी होने पर पशु का शरीर विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हो सकता है, जैसे गर्भाशय का प्रोलैप्स, एबॉर्शन, मृत बच्चों का जन्म, डिस्टोकिया, जेर का रुक जाना आदि। इन व्याधियों से पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में, ये जानकारी विषय था प्रज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन से अधिकतम लाभ, और वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से लेकर
2: प्रवाचिका रिचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
2: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति।

0: लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।

और एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आज 12 बजे से 12:30 बजे के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहतास तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-12-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन आज शुक्रवार को यानी 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

गए। फिल्म आंखें केस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीवीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
4: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण

0: नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकेश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026-29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
2: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा। तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,52,282 करोड़ रुपया।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: कि हम विकसित भारत बनाएं और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाएं। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की राष्ट्रीय के रूप में आपके गाँव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा योजना अब आपका विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित झारखंड।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण

0: बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

जो माधुरी कार्यक्रम सुन भी बारे हमारे समय श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम, वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज की या पावन धरा को नमन करें वंदन करें और आए जुड़े सब ब्रज के वासी। तेरा परे लाख चौरासी,

जब ब्रजवासी सब इकट्ठे है जाए तो चर्चा परिचर्चा है वो शुरू है जाए। कहूँ घर की बात, कहूँ परिवार की बात, कहूँ चिंतन की बात, कहूँ मनन की बात। और हमारे ब्रजवासी क्यों कह रहे हैं कि पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जो हमें अपने आप आसपास रखे है, या में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा और जीव जंतु शामिल हैं। भैयाओ, ये हमारे जीवन को आधार है। स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सके। आज आपको सुनवा में भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी।

0: बात और बताऊं यदि आपको पतो ना हो तो।
1: बताओ भैया कौन सी बात है।
0: पीपल में जो पीपल को वृक्ष है,
1: हाँ हाँ,

या अपना आनंद लियो। भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण या के प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता

में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला

0: बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे।

0: खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic

सुना रेशमा को फिल्म हीरो में, और कार्यक्रम में सुनते हैं ये अगला गीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मन्ना डे को अभी आपने सुना फिल्म उपकार में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है नसीब।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म याराना के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन 12 बजे से 12:30 बजे के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहताश तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-12-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा शुक्रवार यानी कि आज 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज का विषय है बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां और वार्ताकार हैं डॉक्टर संजीव जैन और आपसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, ऐसा कहावत है कि अगर स्वास्थ्य है तो जीवन की हर नियामत आपके पास है, अगर स्वास्थ्य है तो हर धन आपके काम का है, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ दुनिया की आपको वो खुशी नहीं दे सकती जिसका जिसके लिए वो बनी है या जिसके लिए आप बने हुए हैं। अब स्वास्थ्य खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कोई हरी बीमारी लग जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है। तो आज की चर्चा में हम एक बड़ी सामान्य बीमारी है लेकिन कई बार अगर उसको ध्यान न रखें, जानकारी न हो या हम लापरवाह हो जाएं तो वो खतरनाक भी हो सकती है, और वो है पीलिया। तो पीलिया क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसकी रोकथाम हो सकती है और कैसे अगर हो जाए तो उससे हम बच सकते हैं या इलाज करा सकते हैं, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार जैन साहब जो वरिष्ठ सर्जन हैं सौसई अस्पताल वृंदावन में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: श्रोताओं को मेरा नमस्कार
5: जी। तो पीलिया को सामान्यतः लोग बड़े हल्के में लेते, क्या ये ठीक है?
6: नहीं, पीलिया जो है वैसे तो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, और यदि समय पर ये डायग्नोज हो जाए तो बिल्कुल ये सही हो सकती है। मगर पीलिया भी दो प्रकार का होता है, एक तो पीलिया होता है कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ, और एक पीलिया जो होता है वो बिलेरी ट्रैक्ट मतलब पित्त की नली और पित्त की थैली में कोई बीमारी ऐसी हो जैसे कि पथरी की वजह से या कोई कैंसर पित्त की नली में हो जाए उसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। तो दिक्कत उसमें जब आती है कि जब लोग गांव के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि पीलिया है और झाड़ने से सही हो जाता है, और वो पीलिया जो है वो कैंसर या पित्त की नली में पथरी की वजह से पीलिया हो रहा है और पित्त रुक गया है और वो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस रुकावट के वजह से पीलिया कहते हैं, वो उस टाइम खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो डायग्नोज नहीं हो पाता है। और जो पीलिया इन्फेक्शन वाला होता है वो भी पीलिया तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है ओरोफिकल, जो कि हम लोग गंदे खाने पीने से, गर्मियों के मौसम में बरसात के मौसम में गंदा खाना खाते हैं, हाथ नहीं धोए हमने खाया तो वो हेपेटाइटिस ए बोलते हैं उसको। और एक पीलिया जो होता है इन्फेक्शन की वजह से ब्लड टू ब्लड, जो कि जैसे कि आजकल क्या होता है झोला छाप और ये लोग हैं एक एक ही गंदी सुई से हमने दूसरे मरीजों को सुई लगा दी पीलिया वाले मरीज की, तो हेपेटाइटिस बी और सी जो कि इस क्षेत्र में हमारे वृक्ष क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल रहा है
5: जी, जी,
6: तो वो भी खतरनाक हो जाता है। जो कि हेपेटाइटिस ए भी यदि हम लोग डायग्नोज करें और ट्रीट ना करें तो वो भी हेपेटाइटिस ए भी खतरनाक हो जाता है
5: जी जी। यानी खतरनाक अगर लापरवाही है तो फिर कोई

0: पी लिया हो वो आपको परेशानी देगा इसमें। अब
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: सही।
0: प्रारंभिक तौर पे अगर हम देखें तो लक्षण क्या इसमें उभर करके आते हैं, जैसे पीलिया हो रहा है या परेशानी पनप रही है, अब वो सामने तो बाद में आएगी लेकिन कुछ लक्षण तो शुरुआत में शुरू हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, तो वो
1: बिल्कुल
0: कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं किसी परेशानी में हूँ या
1: हाँ,
0: पीलिया जैसी कोई समस्या मेरे सामने हो सकती
1: पीलिया
0: है।
1: के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जैसे तो जो बिलिरुबिन दो हमारा 2 ग्राम से ऊपर आता है, तो जब आंखों में आता है, उससे पहले अधिक काम में मन ना लगना, मन थका थका लगना, पेशाब में हल्का पीलापन आ जाना और हल्का हल्का बुखार रहना,
0: जी
1: यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही लीवर की जांच कराकर और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर
0: इसको
1: देखना चाहिए।
0: दिखा लेना चाहिए उसमें। तो अगर ये लक्षण है तो क्या मतलब एक जांच ही बनती है या कोई फिजिशियन सामान्य तौर पे देख के भी बता सकता है कि ये है, या फिर वो लिख देगा कि भाई ये टेस्ट
1: नहीं,
0: कराने हैं।
1: यदि मरीज के पेट में दर्द भी है इन लक्षणों के साथ में, तो फिर तो ब्लड की जांच, जिसमें कि लीवर की जांच बहुत जरूरी है, प्लस अल्ट्रासाउंड जरूरी है।
0: जी, ये सब करा लेना आप चाहिए उसमें। तो क्या जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति इस चपेट में आ गया है और किसी कारण से लापरवाही हुई, समय पे नहीं दिखा पाया, फिर क्या बनता है उसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है तो कहाँ जाना चाहिए उसको? कई बार ये समझ में यही नहीं आता कि हम दिखाएं कहाँ।
1: यदि उसका भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, आंखों में पीलापन बहुत ज्यादा आ गया है, तो तुरंत ही उसको भर्ती नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर भर्ती की सुविधाएं हैं, जिला चिकित्सालय है, संयुक्त चिकित्सालय है, वहां पर भर्ती होकर अपना तुरंत ही ग्लूकोज लगवाना चाहिए, जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस ना हो और मरीज की कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि पीलिया ज़्यादा बढ़ने पर दिमाग पर असर कर जाता है, जिसको कि हम लोग मेनिनजाइटिस के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि दिमाग पर पीलिया असर कर गया तो फिर वो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता
0: तो
1: है।
0: इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है पीलिया जैसे होता है, तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा
1: इसमें
0: प्रभावित है?
1: ज़्यादा लीवर से प्रभावित होता है,
0: जी
1: और लीवर प्रभावित होने से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अल्कोहल वगैरह भी लेते हैं, और अल्कोहल लेने से भी पीलिया लीवर ख़राब हो जाता है और लीवर सिरोसिस हो जाती है, और तो उसकी वजह से भी पीलिया आ जाता है। तो
0: जी
1: ऐसी कंडीशन में जहाँ पर जो लोग हमारे भाई और जो शराब पीते हैं और उनको पीलिया के लक्षण आ रहे हैं, तो उन कंडीशनों में वो तुरंत ही इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं।
0: जी यानी न सिर्फ इन्फेक्शन और वैसी परेशानी बल्कि कई बार हमारी आदतें भी
1: हाँ
0: इसको बढ़ावा देती हैं
1: बिल्कुल
0: उसमें, तो ऐसी आदतों को या ऐसे व्यसन को हमको छोड़ना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जैसे मान लो अब कोई इस गिरफ्त में आ गया तो क्या इलाज तो संभव है इसका?
1: हाँ, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि पीलिया मोटे मोटे रूप में सर्जिकल पीलिया, जिसमें कि पथरी या वो होता है, या इन्फेक्शन के बेस है। हेपेटाइटिस ए पीलिया जो है वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, यदि आप कोई भी इलाज ना करें, घर पर बैठकर रेस्ट करें और साग सब्जी अच्छे भोजन करें, तो वो पीलिया अपने आप ही धीमे धीमे कम होता जाएगा, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है। और
0: जी
1: दूसरा कार्बोहाइड्रेट डाइट, ग्लूकोन डी वगैरह पानी में घुल के पिए, और आप कहें उनका डायग्नोज होना जरूरी है कि ये हेपेटाइटिस ए ही
0: जी
1: है।
0: जी यानी जो पुराने लोगों की जो वो है कि भाई झाड़ फूँक करा लो, वो एक समय में लिमिटेड समय में अपने थोड़ा सा परहेज से रहे तो वो ठीक हो जाता, तो वो शायद हेपेटाइटिस ए के संबंध में
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो
1: आपको बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास में मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो माला डलवा ली गले में और वो माला धीमे धीमे लंबी होती चली गई और वो हमारा पीलिया अपने आप सही होता गया,
0: तो
1: तो
0: वो
1: वो हेपेटाइटिस ए होता है। होता क्या है कि ये जो झाड़ फूक वाले होते हैं, वो धागे में और लकड़ी की अलपेटा देकर वो माला बना देते हैं, वो अलपेटे अपने आप ही धीमे धीमे खुल के लंबे होते चले जाते हैं, और मरीज समझता है कि ये हमारी माला पीलिया झड़ रहा है और माला लंबी हो रही है, वो अलपेटे खुलते हैं और वो अपने आप कम हो जाती है, वो हेपेटाइटिस ए के कंडीशन में होती
0: चलिए
1: है।
0: वो तो ठीक है कि वो आपकी मान्यता से, लेकिन बी है, सी है
1: हाँ
0: या क्रोनिक कंडीशन है तो फिर
1: हाँ
0: इसमें तो इलाज बनता है, जाना चाहिए, दिखाना चाहिए,
1: हाँ
0: यहाँ लापरवाही जो है
1: हाँ
0: ठीक
1: यदि
0: नहीं है।
1: हेपेटाइटिस बी और सी है तो इसमें बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, और हेपेटाइटिस बी को हम लोग क्योर तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन आ गया तो क्योर तो नहीं हो सकता है, मगर यह है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं।
0: तो उसको इलाज से और परहेज से थोड़ा लंबा मतलब सहज
1: हाँ
0: जीवन गुजार सकते हो
1: बिल्कुल
0: उसमें। अब थोड़ा सा चूंकि बरसात का मौसम आ रहा है इसमें, यहाँ थोड़ी सी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस मौसम में जहाँ पानी होगा, पानी भरेगा तो मच्छर तो होते ही है, बुखार सामान्यतः रहेंगे, लेकिन और जो आपने कहा जैसे गंदगी से पीलिया भी होता है, लेकिन और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस बरसात के मौसम में और गंदगी से फैलेंगी और जिससे हमें बचकर रहना
1: हाँ,
0: चाहिए?
1: जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस ए जो है गंदे खाने पीने की वजह से होता है, इसके साथ साथ अन्य बीमारी जो

0: होती हैं वो कोलाइटिस, आंतों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, और सेकंड जो कि पेट की अन्य बीमारियां, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि मरीज जो है खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो टाइफाइड मियादी बुखार जो होता है, ये भी वाटर बॉर्न डिसीज होती है जो कि आजकल काफ़ी फैल रहा है।
1: तो इस समय कम से कम खान पान में साफ सफाई रखें, शुद्धता रखें, रखा हुआ खाना ना खाएं, ढका हुआ खाना ही खाएं। अब जैसे हालांकि अब तो त्योहार तो शुरू होंगे, लेकिन शादी ब्याह का मौसम तो अब नहीं रहा, लेकिन ऐसे में जब हम कहीं खाना खाना जाते हैं, कोई पार्टी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, वहाँ बड़ी देर से प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब काफ़ी देर, और हम शाम को उसको खाते हैं, तो वहाँ क्या चुनाव होना चाहिए, हमें किस तरह खाने का चयन करना चाहिए? सारा खाना हमारे लिए नहीं होता, लेकिन हम फल भी खाते हैं, जूस भी पी लेते हैं, और सब तरह के खाने को खाते हैं, तो वहाँ एहतियात क्या रखनी चाहिए ऐसे में?
0: शादी ब्याह की बात आप छोड़िए, घर में भी यदि खाना 3-4 घंटे बना हुआ आपका बाहर रह गया तो टेम्परेचर 45 से ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में फर्मेंटेशन खाने में शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन बैक्टीरिया या कोई भी फंगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो
1: शुरू
0: जाती
1: हो
0: है।
1: जाती जी।
0: तो ऐसा खाना यदि आपको लगता है कि हम लोग 3-4 घंटे तक नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर फ्रिज में या ऐसी जगह पर रखें जिससे कि वो ढक के रखें। तो शादी ब्याह में ऐसे आप खाने जा रहे हैं तो खास तौर से ऐसा खाना जो कि वो खुले में रखा हुआ हो और जिसमें कि आपको लग रहा है कि बहुत दिन से टाइम से बन गया हो, तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: खाना चाहिए उसमें, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या चलते चलते बताएंगे इसमें, बरसात के मौसम में थोड़ा सा जैसा होगा कि खुले में जैसे कई बार पानी भर जाते हैं, आसपास रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो वहाँ से चीज़ें आने वाली हैं वो हमको ज़रूर प्रभावित
0: हाँ
1: करती हैं, चाहे वो
0: तो
1: मच्छर हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, तो अपने आसपास, अपने परिवेश में साफ़ सफाई की बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कितनी हमारे समाज के लिए और हमारे लिए
0: हाँ यदि
1: लाभदायक हैं?
0: आपका वातावरण और आसपास के आपके घर का वातावरण और सफाई है, तो आप स्किन डिसीज जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियों में होती है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, और जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो फ्रंकलोसिस आदि होता है तो उसको खुजला लेता है तो तुरंत ही पस्चुल मतलब पस पड़ जाता है उसमें, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आजकल यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरा स्केबिज बीमारी होती है वो कि इसी मौसम में फैलती है और पूरे घर में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सारे कपड़े गर्म पानी से उबाल कर धो कर रखें और कोशिश करें कि आप डेली नहाएं और अपने आसपास के एरिया को और पानी को आप दूषित होने से बचाएं।
1: जी। तो श्रोता बंधुओं, ये बात हम कर रहे थे डॉक्टर जैन साहब से, जो वरिष्ठ सर्जन सौसैया अस्पताल वृंदावन में, और जानकारी दे रहे थे कि चाहे बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या फिर कोई भी समय, लेकिन हमें सावधानी हमेशा ज़रूर रखनी चाहिए, अपने आसपास के परिवेश को साफ़ रखें, अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको रखी हुई ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। एक डॉक्टर साहब, फलों को लेकर उनको भी बड़ी वो है कि आजकल थोड़ा सा एहतियात ये बरतनी चाहिए कि जैसे बाज़ार से हम फल लाते हैं, कई बार हम सीधे खा लेते हैं, उसमें कई बार जैसे घर पे नहीं होती, भूख लगी होती है, तब कुछ भी खा लेते, तो ऐसे समय में खान पान को लेकर के थोड़ा सा क्या कहेंगे उसमें?
0: हाँ एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो मार्केट में फल आ रहे हैं वो तो ये देखना है कि ताज़े हैं या नहीं है, और यदि ताज़े के साथ साथ जो फल जो हैं आजकल जल्दी से जल्दी मार्केट में डिमांड की वजह से उनको कच्चे फलों को केमिकल से पकाया जा रहा
1: पका
0: है,
1: दिया
0: पकाया
1: जाता है।
0: जाते आता है, और हम लोग आए और तुरंत ही छील के हम लोग को खाना चालू कर देते हैं, तो एक तो ज़्यादा पके हुए फल ना खाएं, जो भी फल खाएं वो उनको अच्छे ढंग से पानी में धोकर उनको खाएं और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उनको पानी में डुबो कर और उनको रगड़ कर फिर आप खाएं, तो उससे आपका स्वास्थ्य
1: मतलब सिर्फ अपना साफ सफाई, बल्कि जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं वो भी स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो उपयोगी हो सकती हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहें?
0: बस मैं ये कहकर नहीं जाऊंगा कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ भोजन आपका करें जिससे कि आपका पूरा जीवन जो है वो सही रहे।
1: खुश रहे,
0: मैं
1: और ये डॉक्टर साहब की सलाह है और नेक सलाह है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जल्दी में हम ऐसा भी करते हैं कि बिना हाथ धोए खा लिए। तो साफ सफाई परिवेश की हो, स्वयं की हो, या खान पान की जो चीज़ें उनकी हो, बहुत आवश्यक है। और बहुत सारी चीज़ें
0: इसमें
1: इनसे
0: एक
1: भी
0: चीज
1: आ
0: मैं
1: जाती
0: एक
1: हैं।
0: और बात कहना चाहूंगा कि हैंड वॉश जो है,
1: जी
0: हाथ धोने की विधा जो है, उसकी भी सरकार बहुत जोर दे रही है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: हाथ धोना बहुत जरूरी है, और हाथ धोने के

0: पांच स्टेप होते हैं,
1: जी
0: इसलिए यदि आप अपने बहुत से मतलब कोई बिना खर्चे के एक साबुन से आप हाथ धोते हैं तो
1: हाँ,
0: उससे भी आप कम से कम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
1: कम से कम 2 बार 3 बार जब खाना खाते हैं तब तो हम धो ही सकते
0: और
1: हैं
0: बाहर
1: हाथ
0: से
1: को।
0: कार क्षेत्र से आते हैं तो तुरंत हाथ धोएं आप।
1: जी, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, अपनी जानकारी में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेंगी। डॉक्टर साहब, आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोता बंधुओं के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम, विषय था बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां, और वार्ताकार थे डॉक्टर संजीव जैन और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
2: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार शक्ति दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
4: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की, जो कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट हैं और यूपी सीएनडीएस इसमें कार्यदायी संस्था है, तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है, इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
2: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश

इस के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को डीएम अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव उम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जून में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंडर 12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग

0: वनडो प्रतियोगिता अंडर 12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा सीआईएस द्वारा अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में यूपी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुरुप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त यूपीएससी कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित उर बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
1: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गयी। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी

0: डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 3,11,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबोहवा। विषय है मानव स्वास्थ्य पर मोबाइल की किरण का दुष्परिणाम। आलेख और वाचन डॉक्टर RS मीणा का है।
4: हम हर रोज हिमालय से बर्फ पिघलाकर तो पानी ला नहीं सकते। दूषित पेयजल पीने या भोजन बनाने के काम में लेने से मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इससे हैजा, उल्टी, क्षय, टाइफाइड, पीलिया और पोलियो जैसे विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि नहाने धोने के लिए भी प्रदूषित पानी का उपयोग करने पर चर्म रोग हो सकता है और अन्य प्रकार से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। नदियों का जल स्वच्छ प्रवाहित होता रहे तो इससे पर्यावरण तो साफ सुथरा एवं ताजगी भरा रहता ही है तथा देखने में दृश्य भी मनोरम लगता है, जिससे एक अलग ही आत्मिक शांति सी अनुभूति होती है। नदियों की स्वच्छता का अपना ही महत्व है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाकर इसकी पूजा को आज भी उतने ही प्रासंगिकता से देखा जाता है। गंगा ही नहीं, प्रदेश की हर नदी को हमें स्वच्छ रखने की महती आवश्यकता है, इसलिए इनकी सफाई की अलग से व्यवस्था करना नितांत आवश्यक हो गया है तथा भारत सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में गंगा जल आयोग का गठन भी कर दिया गया है। इसी प्रकार नालों की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाली सड़क के दोनों किनारों या एक किनारों की तरफ प्राय देखी जाती है। नालियां की स्वच्छता के लिए जरूरी है कि हम पॉलीथीन का कचरा तथा अन्य जमा होने वाला कचरा उसमें नहीं डालें एवं नालियों का ढकान करवाना भी अत्यंत आवश्यक है। दूर दराज के गांवों में आज भी पेयजल व्यवस्था हैंडपंप एवं तालाबों पर निर्भर है। हैंडपंप तो ढका हुआ रहता ही है, परंतु तालाबों के खुले होने के कारण उनमें भी अशुद्धियां प्रवाहित करने की गलत परंपरा को रोकना अत्यावश्यक हो गया है। अतः इनकी स्वच्छता भी अति महत्वपूर्ण है। इनकी सफाई से ही पर्यावरण स्वच्छ रहता है एवं आबोहवा भी ऑक्सीजन युक्त एवं ठंडी होती है। यदि नदी, नालों और तालाबों में गंदगी रहेगी तो वहाँ हवा भी दूषित हो जाएगी और पानी भी पीने लायक नहीं रहता। नालियों का सही प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए और उनका ढकान होना चाहिए। हालांकि स्थान स्थान पर सुविधा अनुसार मैन होल छोड़ देने चाहिए ताकि सफाई आसानी से की जा सके। नदियों एवं तालाबों में आजकल जो मूर्तियां विसर्जित करने की अंधभक्ति चली आ रही है उसको भी रोकने की आवश्यकता है। अजले शवों को नदियों एवं नहरों में बहाने से रोगी शव के कीटाणु जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि इससे नदियों का पानी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए इस दिशा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने, विचारने और अमल करने का समय आ गया है, अन्यथा हमें प्रदूषित जल के प्रयोग पर विवश होना पड़ेगा, जिसका विपरीत असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अस्थि विसर्जन को प्रतीकात्मक बनाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि गंदगी कम से कम प्रवाहित की जाए। नदी एवं अन्य जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ बहाना और डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कदम उठाना वांछनीय हो गया है। संसद द्वारा पारित जल प्रदूषण निवारण कानून का कड़ाई से पालन करवाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था मानव स्वास्थ्य पर मोबाइल की किरण का दुष्परिणाम। आलेख और वाचन डॉक्टर आर एस मीणा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 12:30 के मध्य एक फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहतास देवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज।

0: शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
5: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि नहीं रहे तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयां कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक नहीं रहीं, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी 3 सगाइयां हुई थीं। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि 3री सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1-8 साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गाने गागा कर अपनी आवाज बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होंगे, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियां सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाट से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और दूसरे ऐसे ही विचारों से ये 3ों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि हमारा ब्याह होने वाला है। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वो मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है,

0: बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद आधा तो चला ही गया। फिर भी ब्याह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं? मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल ही गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था ना। यहां विषय का मतलब एक इंद्रिय विषय का नहीं, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए, ये ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था।
1: ये थे बापू के विचार, और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे गांधी चर्चा। विषय था पारिवारिक संबंध पर गांधी जी के विचार, और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी आगरा केंद्र की प्रस्तुति। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 12:30 के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहतास तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगाकर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं सुधीर बोस। सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गजल।

सुधीर बोस की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। वार्ताकार हैं डॉक्टर तेजपाल सिंह।
1: श्रोताओं, भारत को गांव का देश कहा जाता है और भारत के विकास की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारत के विकास का जो रास्ता है वो खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित है। और भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि भारतीयता को अगर जानना है तो ये ऋषि और कृषि के माध्यम से ही इसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुत लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वहाँ रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा के नाम से योजना चल रही थी, लेकिन आज की सरकार ने एक नए अधिनियम के माध्यम से इस कार्यक्रम में परिवर्तन किए हैं और इस नई योजना का नाम जो रखा गया है वो है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025। इस योजना को लाने में क्यों जरूरत पड़ी, मनरेगा को बदलने में क्यों जरूरत पड़ी और इससे क्या कुछ परिवर्तन विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत के रूप में हम जानी जाएं, पहचानी जाएं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तेजपाल सिंह साहब हैं, आप प्राचार्य हैं और अर्थशास्त्र के जानने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और ये जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं की तरफ से कि ये जो आजीविका मिशन विकसित भारत करके सरकार लेके आई है, जिसको बीवी राम जी संक्षेप में हम कह रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा इस अधिनियम की जो खासियत है वो क्या है और ये अधिनियम वास्तव में है क्या?
2: ये जो अधिनियम है
1: जी,
2: ये मनरेगा 2005
1: जी,
2: और इसमें मनरेगा भी नहीं कहेंगे, पहले 2005 में जब विधेयक पास हुआ इसका नाम नरेगा था और उसके पश्चात 2009 में इस नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ करके इसे मनरेगा नाम दिया गया था। उसी का एक उसमें सुधार करते हुए वर्तमान सरकार उसी योजना को लेकर आई है जिसका नाम रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 कहा गया है। ये जो अधिनियम है ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 20 वर्ष पुराने मनरेगा का एक बड़ा बदलाव है। यह विकसित भारत 2047 के साथ जुड़ा एक आधुनिक वैधानिक संरचना स्थापित करता है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह मुख्यतः चार प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थायी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का निर्माण करना है
1: जी,
2: जिसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा के कार्य होते हैं, जिनमें लगभग 68,000

0: जलाशय स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें ही प्रमुख ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप विभिन्न प्रकार के रोड, संपर्क मार्ग और विभिन्न प्रकार के कार्य,
1: जो निर्माण कार्य
0: निर्माण कार्य हैं
1: गांव की जरूरत के साथ,
0: गांव की जरूरत के अवस्था के अनुसार, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विशेष कार्य जो होते हैं, जैसे बाढ़ का कार्य हो जाए या पानी का निकास करना है, इस तरीके से जो कार्य होते हैं वह भी इसमें सम्मिलित होते हैं
1: जी। तो अब जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण जरूरतों को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में, तो जलाशय निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आजीविका पैदा करनी है और विशेष परिस्थितियों में जो जरूरत है उस तरह के कार्य। ये कार्य तो क्या मनरेगा से में भी होते थे, तो फिर ये भिन्न कैसे रहा इसमें? इसकी तुलना अगर हम करें तो क्या कुछ
0: जी,
1: ऐसा
0: जी.
1: है जिसमें कहा जा सकता है कि नहीं, ये वाली चीजें थोड़ा सा अब बेहतर हो जाएंगी इसमें?
0: देखिए, जो ये अधिनियम लाए हैं, ये अधिनियम मनरेगा की तुलना में एक बड़ा रूप, जिसका कहेंगे हम विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए हमारा जो संरचनात्मक क्षेत्र में सुधार करता है। जो इसमें सुधार की जब हम बात करते हैं कि मनरेगा की तुलना में जब मनरेगा था तो इसमें ये विधेयक लाने की क्या अवस्था थी, उसमें मैं आपको इंगित कर देना चाहता हूं कि इसके अंदर, जो मनरेगा के अंदर 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन तक कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को उनकी उच्च आय और सुरक्षा मिलेगी, उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा। इसमें मनरेगा कार्यों को एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति के बिना कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। नया अधिनियम स्थायी संपत्ति सुनिश्चित करने वाले कार्यों पर केंद्रित है, जो सीधे जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित निर्माण और जलवायु अनुकूलन का समर्थन करते हैं।
1: मतलब आपका कहना यह है कि ये इसमें जो कार्य किए जाएंगे वो थोड़ा स्थायी टाइप के होंगे, ऐसा नहीं कि हर साल काम हो रहे हैं फिर वो खराब हो गए फिर वो हो गए। तो इसमें एक योजनागत, तो उसमें पैसा अगर लगे तो गांव के विकास में भले गांव का ये वाला हिस्सा हो या ये वाला काम हो, लेकिन वो थोड़ा स्थायित्व वाला हो।
0: बिल्कुल।
1: तो इस पर थोड़ा सा जब योजना बनेगी, उसकी निगरानी होगी, मूल्यांकन होगा, तो वहां एक स्थायी विकास हो, ऐसा इस अधिनियम में सोचा गया है।
0: हाँ
1: जी,
0: इस अधिनियम में ये सोचा गया है कि इस अधिनियम में आप ये देखेंगे कि जो मनरेगा में स्टेट का जो रेशियो था वो 25% था, और इस अधिनियम में 40% रेशियो बढ़ा करके कर दिया है
1: जी।
0: और राज्य सरकार की जब उसमें सहभागिता बढ़ती है तो राज्य सरकार को भी निगरानी करने की ज्यादा उसमें स्पष्टीकरण रहता है और उसकी जवाबदेही रहती है। इसी वजह से कि एक पारदर्शी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो निर्माण कार्य हो, जो भी कार्य हो, वो उसमें टिकाऊपन हो, उसमें निश्चित रूप से एक पारदर्शिता और एक अच्छा कार्य हो
1: जी,
0: तो इस बात का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है
1: जी। तो आपको क्या लगता है कि इस नई योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, क्योंकि जिन चीजों को लिया है निश्चित तौर पे वो गांव की और गांव के परिवेश की जरूरतों को पूरा करता है?
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल,
1: पानी की,
0: जी आपका जो कहना है बिल्कुल सही बात है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम है ये आपकी आय में वृद्धि करेगा, और उस जब आय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है। इसके साथ ही इस कार्य से जल संबंधी कार्य को

0: प्राथमिकता दी जाती है इसके अंदर, जिसमें मिशन अमृत सरोवर योजना पहले से संचालित है, उसमें पहले ही 68,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जा चुका है
1: जी जी,
0: जो स्पष्ट रूप से जल और कृषि पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जितना जलाशय बने हैं और जलाशयों का निर्माण हुआ है, इससे हमारा निश्चित रूप से भूजल का जो स्तर है
1: जी,
0: उसमें वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि भूजल का प्रयोग हम कर रहे हैं और वो जल का स्तर है वो नीचे निम्न नीचे की तरफ चला जा रहा है और कहीं कहीं तो बहुत पानी की विकट स्थिति हो गई है। इन सारी समस्याओं को निदान में ये बड़ा ही सहयोगी रहेगा।
1: मतलब जो बरसात में पानी है वो हमारे जलाशयों में इकट्ठा होगा, जलाशय खोदेंगे तो वहां भी मजदूरी में रोजगार सृजन होगा, तो एक तरफ चीजें बनेंगी, दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा, तो पैसे का जो फ्लो है, जो इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित तौर पे गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ये मतलब निष्कर्ष निकल रहा है उसमें। अब गांव में जैसे किसान रहते हैं या किसान और खेती पर आधारित कृषक मजदूर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका लाभ होगा तो लाभ किसानों को भी होगा, फिर मजदूरों को भी होगा, तो ये बात भी,
0: ये एक फ्लैगशिप योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस महत्वपूर्ण योजना से इसमें किसानों को भी लाभ मिलेगा, इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो किसान जिनकी फसल की कटाई और बुवाई के समय श्रमिक नहीं मिल पाते थे
1: जी जी,
0: और वो इसी योजना के माध्यम से वो श्रमिक भी उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी
1: जी जी जी,
0: क्योंकि जो 60 दिन का जो इन्होंने ब्रेक दिया है,
1: हाँ हाँ,
0: जो किसानों का कार्य कटाई का चलता है और समय मजदूर नहीं मिलते, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन कर दिया कि उन 60 दिनों में मनरेगा के कोई जो कार्य हैं जिसे हम जी राम जी कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो अब नहीं होंगे,
1: अब नहीं होंगे।
0: तो हम ये देखते हैं कि मनरेगा जब काम बंद होने पर राज्य सघन जो कटाई और बुवाई के दौरान जो 60 दिनों तक की अवधि को अधिसूचित किया है, उसमें महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के दौरान यह श्रमिक की कमी को दूर करता है और उन्हें गारंटीकृत मजदूरी कार्य स्थलों पर स्थानांतरित होने से रोकता है, क्योंकि जो मजदूर थे वो बाहर चले जाते थे, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय किसानों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
1: जी जी,
0: ये एक बहुत बड़ी,
1: अब डॉक्टर साहब आप तो चूंकि अर्थशास्त्र के हैं तो छोटी छोटी घटनाओं का, छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे आंकड़ों का भी जीवन में असर पड़ता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 125 दिन की का रोजगार तो सरकार ने सुनिश्चित कर दिया
0: जी
1: कि मिलेगा ही मिलेगा
0: जी,
1: जिनके पास रोजगार नहीं है
0: जो
1: बेरोजगार हैं, तो 125 दिन का रोजगार तो गवर्नमेंट दे रही है
0: जी जी,
1: लगभग 60 दिन का रोजगार फसल में आदमी को मिल ही जाता है
0: जी,
1: जो उसमें रहते हैं
0: जी,
1: मतलब जो कटाई में मड़ाई में और उनमें रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी मिल जाता है
0: जी,
1: तो 185 दिन का रोजगार तो मिल गया, लगो आधे वर्ष का तो हमें रोजगार मिल गया उसमें
0: जी,
1: और ये अभी शुरुआत है
0: जी,
1: 125 दिन तो हमने शुरुआत किया है
0: जी,
1: इसमें
0: जी,
1: तो कल को ये और चीजें जब जरूरत होगी तो बढ़ेगी। तो गांव के क्षेत्र में जो रोजगार की एक समस्या थी वो कहीं सरकार उसको एक आजीविका जैसे इसमें जोड़ा है, वो गारंटी वाली बात जोड़ी है इसमें, तो रोजगार सृजन को प्राथमिकता इसमें मिल रही है, इसमें
0: बिल्कुल मिल रही है। देखिए इसमें आपने जो बताया कि 125 दिन का तो जो योजना के तहत निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और उस 60 दिन की अवधि में जो फसली रोजगार जिसमें किसान जो मजदूर है वो कार्य करना चाहता है, और इवन उस जो जी राम जी अधिनियम के तहत वो काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे फसल काट के समय में अपने पूरे साल के लिए एक अनाज एकत्रित कर लेता है, तो उसको जो उसको ये निश्चित होगा, तब ये कहते थे कि हमें मनरेगा में जाते तो वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन लेकिन अब उनको 100%
1: सुरक्षित है, 125 दिन तो आपको सुरक्षित है,
0: वो तो 125 दिन
1: सुरक्षित टाइम पे आप व्यस्त हैं तो आप

0: अपना काम कर रही
1: है। बिल्कुल, वो तो 125 दिन सुरक्षित हैं, उनमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। 60 दिन का आपको ये कार्य मिल गया। और इसमें एक चीज और है, अगर 15 दिन तक लगातार अगर किसी मजदूर को काम नहीं मिलता है तो उसकी भरपाई के लिए उनके लिए व्यवस्था है
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ा इसमें एक फायदा है
0: कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपका कोई धनाधोरी नहीं है,
1: नहीं
0: कहीं
1: नहीं
0: कोई
1: ऐसा नहीं।
0: इनकम का वो नहीं है, तो एक एक तरह से सुनिश्चितता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम विकसित भारत की संकल्पना
1: बिल्कुल
0: करते हैं
1: बिल्कुल
0: तो वहां फिर शहरी क्षेत्र ही नहीं और ये जो सर्विस आधारित क्षेत्र ही नहीं, हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी देखना है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के रोजगार और उनके आजीविका को भी देखना है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार चाहती है कि अगले 25 सालों में, जब 47 में हम 2047 में 100 साल मनाएंगे आजादी के, तो वहां जो हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत हो, तो ये एक योजना, तो ये एक बहुत बड़ा कदम, वो एक बहुत बड़ा वो सिद्ध होगी।
1: निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम सिद्ध होगी। और जब हम विकसित भारत 2047 की जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना के अनुरूप हमारी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये एक अंत्योदय योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जो अंतिम व्यक्ति मजदूर है उसका
0: जी
1: विकास कैसे हो, उस योजना को आधार बनाते हुए, देखिए जब तक देश का विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते, जब तक हम अपने मजदूर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति, उपाध्याय जी ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जो अंतिम व्यक्ति मजदूर है उसका
0: जी
1: विकास कैसे हो, उस योजना को आधार बनाते हुए, देखिए जब तक देश का विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते, जब तक हम अपने मजदूर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी, आर्थिक दशा में सुधार होगा, उसके पास पैसा आएगा, और जब वो पैसा आएगा तो वो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह होगा, और जब मुद्रा का प्रवाह होगा तो सभी लोगों की आर्थिक दशा में सुधार होता है, चाहे वो ठेली लगाने वाला हो, चाहे वो उद्योगपति हो, क्योंकि यहां आवश्यकताएं और डिमांड दोनों चीजें बढ़ती हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: बहुत
1: निश्चित रूप से विकास होता है। तो ये जो योजना लाई गई है ये
0: ये
1: निश्चित रूप से
0: मतलब
1: विकसित
0: जैसे आप कह
1: भारत
0: रहे हैं कि
1: 2047 की
0: योजनाओं में बदलाव जरूरी है, तो ये बदलाव का ही है कि भाई वो 2005 में कोई योजना लाई तो 20 साल में मूल्यांकन बनता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी या छोटी छोटी जो रुकावटें थी उनको दूर करके एक बेहतर रूप स्वरूप में इस अधिनियम को हम लेकर के आए, जिसमें 125 दिन की तो कम से कम गारंटी है, और हमने 60 जोड़ के ये देखा कि लगभग आधे साल तो भाई रोजगार मिल ही गया, और बाकी फिर जब लगे रहेंगे तो और भी चीजें हैं, मौसम आधारित आपने बताया कि कुछ ऐसे समय आ जाते हैं वहां काम एडिशनल मिलेगा, ये तो कम से कम है कि इतना तो
1: जी
0: मिल ही
1: जी
0: गया, इसके एडिशनल और होगा, और शायद मुझे लगता है कि जब हम इस योजना पे आगे बढ़ेंगे कुछ कमियां और निकल के आएंगी तो उनमें भी सुधार होगा। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक बड़ा देश बड़ी आबादी गांव में रहती है तो उसके विकास के लिए सोचना बनता था, और वो इस माध्यम से गवर्नमेंट ने किया है
1: नहीं
0: इसमें।
1: नहीं
0: जी
1: बिल्कुल सही किया है, सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ये सरकार की जो सोच है वो सोच हमारे देश के विकास के लिए है। हमें विकसित भारत 2047 का विजन हमको आगे लेकर के चलना है। जब नरेगा 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो तब की स्थिति परिस्थितियां अलग थी, अब देश का विकास बहुत हो गया है, और उस योजना के तहत तो जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी उन कमियों को भी इस योजना के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां थी कि जॉब कार्ड, नरेगा कार्ड और विभिन्न प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन इस योजना में इस तरीके से पूरा बाउंडेशन कर दिया गया है, और आधुनिक और एआई का प्रयोग करते हुए कि इसमें व्यक्ति को रोजगार मिले और उस रोजगार का फायदा आर्थिक विकास में हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो, और जब तक ग्रामीण की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा तब तक हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
0: जी। तो श्रोता बंधुओं, अभी हम चर्चा कर रहे थे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025, इस मनरेगा का बदला हुआ स्वरूप।

0: रूप है। और इसमें संकल्पना यही है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी विकास हो, स्थायी कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कुछ जल संबंधी जो आजकल हर क्षेत्र में परेशानी आ रही है उसका स्थायी समाधान निकले, और रोजगार जो आज के समय की बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है, उसका समाधान भी हो। क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं, अपने आप नियमित रूप से होने लगती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार सृजन हेतु अपना योगदान देगा। डॉक्टर साहब, कुछ चलते चलते और कहना चाहें इसमें, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें श्रोताओं को बताने की
1: नहीं, मैं
0: आवश्यकता
1: सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं
0: है।
1: कि जो वर्तमान सरकार द्वारा वीवी जी राम जी जो अधिनियम

0: वीवी जी राम जी जो अधिनियम लाया गया, ये बहुत ही क्रांतिकारी अधिनियम है। इस अधिनियम से सिर्फ बेरोजगार को ही फायदा नहीं है, इस अधिनियम से किसानों को भी बहुत फायदा है। और जब किसान देश के विकास की धुरी है तो निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से हमारा विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। उस साकार करने में इस योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।
1: जी, तो श्रोताओं आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब तो शुरू हो ही गई है और जब ये कार्यक्रम आपके बीच आएंगे, विशेषकर ग्रामीण अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, या जो उस क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस योजना को समझें, जुड़ें और जानें, और आप अधिकार पूर्वक जाकर के अपने प्रधान से मिल सकते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल सकते हैं कि ये जो बदली हुई वो है उसमें हमारे लिए किस तरह के कार्यक्रम हैं। तो निश्चित तौर पे उससे जुड़िए, लाभ उठाइए। डॉक्टर साहब आप आए और हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी दी अपने महत्वपूर्ण अनुभव से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद, थैंक यू, सभी श्रोतागणों को नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भेंट वार्ता, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। वार्ताकार थे डॉक्टर तेजपाल सिंह और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगा करके 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

और एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 12:30 के मध्य एक फोन इन कार्यक्रम, विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहतास तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे

अलका याग्निक अभिजीत को भी आपने सुना फिल्म यस बॉस में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को, फिल्म का नाम है आशिकी।

अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म साजन में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

अमीला चोपड़ा, मनजीत कौर और साथियों के गाए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं, आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: जी रश्मि दीदी को सुभाष गर्ग का प्यार भरा नमस्कार।
0: आय हाय हाय हाय, मैं मारी जावा इस प्यार भरे नमस्कार पर।
1: जी जाने क्या बात है तेरी महफिल में सितमगर।
0: हाँ
1: जी दीदी, जाने क्या जादू है, हम तो खिस्सी से ले आते हैं।
0: अरे वाह।
1: जी जी
0: जी, चल
1: आप एकदम बढ़िया होंगी, मैं पूरी पूरी उम्मीद है।
0: देखिए आप लोगों की आवाज सुन के तो मुझे और एनर्जी मिलती है।
1: अरे वाह दीदी वाह, मजा आ गया
0: है ना। तो अच्छा लगता है ये कार्यक्रम, आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के साथ में जुड़ना और आपको आपकी पसंद के गीत सुनाना।
1: जी दीदी
0: है ना,
1: आज आपसे जी आज हम इस कार्यक्रम में आज आप और हम साथ साथ हैं।
0: हाँ
1: क्यों ना एक गाना सुनने की आपसे इजाजत ले ली जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, एक गाना है आज मत होश हुआ जाए रे।
0: मेरा मन
1: मेरा मन मेरा मन मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे।
0: चलिए बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है और इस गीत को आप तक
1: मौसम भी कुछ यही कह रहा है।
0: बिल्कुल आपको ये गीत जरूर सुनने को मिलेगा।
1: चलते चलते हम यही कहेंगे
0: हाँ?
1: फिर मिलोगे इस बात का वादा कर लो।
0: ओहो
1: मिलोगे
0: हाँ?
1: इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो।
0: कर लिया, पक्का वाला प्रॉमिस कर लिया।
1: थैंक यू दीदी।
0: जी जी नमस्कार,
1: साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं सर बेसोटा नगर गांव कुआं से भजनलाल बोल रहा था मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है, हम तो आप कुशल हैं सर।
0: चलिए भजनलाल जी, और भजन वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
1: सब चल रहा है सर, बिल्कुल मैडम, तो यही काम है, इसके अलावा कुछ काम है ही नहीं।
0: चलिए भजन भी करते रहिए और कार्यक्रम भी सुनते रहिए। हाँ
1: जी जी सर,
0: तो
1: आपके कार्यक्रम चलते सुनते रहते हैं सर, इसी से हमारा मन लगता रहता है।
0: अच्छा, चलिए मन लगता
1: प्रोग्राम आ रहे हैं आपके यहाँ से आजकल, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहे हैं।
0: अरे वाह, तो आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आपका मन लग रहा है और आप प्रसन्न हैं।
1: निकल गई मथुरा वृंदावन सब सुनते सुनते सब।
0: पुराने श्रोता हैं आप? हाँ
1: जी।
0: आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: अरे आज हम तो भजन ही कर रहे हैं, तो गोपी फिल्म का भजन सुनवा दिए सब।
0: गोपी फिल्म से?
1: हाँ
0: ठीक है, ओके।
1: मोहम्मद रफी साहब के बाद में
0: जी
1: भजन है
0: जी जी जी
1: सुख के सब साथी दुख कानों को,
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी, मनोज नामदेव।
0: कैसे हैं मनोज जी?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से। बढ़िया हूँ बंसी वाली कृपा से, बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी, ये ठोका पीटी सी क्या चल रही है पीछे?
1: दीदी शॉप है, मेरी शॉप के बगल में एक दुकान है, उसको चल रही है दीदी।
0: अच्छा चलिए, कुछ काम हो रहा होगा वहाँ।
1: जी जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सेटर वगैरह बनते हैं दीदी।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कैसा चल रहा है काम?
1: बिल्कुल दीदी काम बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए, और इसी के साथ पसंद क्या रहेगी आपकी?
1: जी दीदी आज है फिल्म का नाम रहेगा ब्रजभूमि, उसमें गाना है चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: और हमारी भाभी जी कैसी हैं?
1: बढ़िया हैं, वो भी सब बच्चों को तैयार कर रही हैं स्कूल जाने के लिए।
0: आज स्कूल का दिन, पहला दिन जुलाई है और स्कूल खुल गए होंगे बच्चों के।
1: जी
0: जी, और आज कोई गीत सुनाएंगे अपना?
1: अगली बार सुनाएंगे।
0: अच्छा, अगली बार सुनाएंगे, तो अभी हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं फिर ये बताइए।
1: आप हमें सुनवा दें, सावन को आने दो मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे।
0: ठीक।

0: हेलो आकाशवाणी
1: वाणी, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान से।
0: जी कैसे हैं सांवरिया जी आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ रश्मि जी कैसी हैं?
0: बिल्कुल, हम भी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। और कैसा है इस समय आपके गांव में मौसम?
1: बरसात तो हुई है, फिलहाल बादल छाए हुए हैं, ठंडक है, मौसम में परिवर्तन है।
0: चलिए, और परिवर्तन का नाम ही जीवन है। लेकिन
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमारे श्रोता परिवर्तित ना हो, हमारे श्रोताओं का जुड़ाव आकाशवाणी से हमेशा बना रहे, है ना?
1: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है,
0: है ना? तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सुनवाइए धरती कहिए पुकार के, ये कि हम तो मिक चोरी से बंधे एक डोरी से।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बहनी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी ग्राम नगरी गया से आपसे बात कर रहा हूँ जी।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। अभी पसंद क्या रहेगी आपकी?
1: आज फिर मैं सीआईडी
0: कौन सा गीत है?
1: लेके पहले पहले प्यार भर के आ जादू नगरी से आया।
0: ठीक है।

अभी आपने सुना हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़।

पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें, श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 12 बजकर 30 मिनट के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहताश तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम आज प्रसारित होगा 3 जुलाई 2026 को, समय रहेगा दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

पंडित गोपाल, सुखदेव, कौशलेंद्र और राघवेंद्र शर्मा के स्वर में आपने माँ भगवती की स्तुति सुनी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। स्वर है पंडित भीमसेन जोशी का।

सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला भजन आपको सुनवाते हैं, स्वर है जगजीत सिंह का।

मन्ना डे की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है गीत बात और SMS कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा सजीव विशेष फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन। आज कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रोहताश तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन

कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके विशेष गीत बात और SMS के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रोहिताश सिंह तेवतिया साहब। आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं मथुरा में। एक ऐसा कार्यक्रम जो निश्चित तौर पर कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन इलाज से बेहतर सुरक्षा होती है, बचाव होता है। तो प्रतिरक्षण का मतलब यही है कि जब हम टीका लगवाते हैं तो किसी भी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता एक व्यक्ति में आ जाती है, लेकिन अगर ये प्रतिरक्षा हमारे पास नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई भी बीमारी जो हो सकती है उससे लड़ने की क्षमता हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो आप दो टेलीफोन नंबर आपको बताएं, 2530-135-0565 कोड लगा लीजिएगा, और एक व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575, इस पर दोनों लाइनें खुली हुई हैं। जो भी सुझाव हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जो प्रश्न करना चाहते हैं, एक जो हमारा जिले का ऑफिस होता है सुरक्षा का, आप CMO ऑफिस जिसको जानते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर रोहिताश सिंह जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत सर, प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको।
1: नमस्कार सर, और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार
0: जी। तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, नियमित तौर पर चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है, बीमारी कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीके आ गए हैं जो सरकार की तरफ से एक रोस्टर बना दिया गया है कि बच्चा पैदा होते ही उनको लगवाना ही है, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में हो, घर में हो, परिवार में हो, या कैसे भी आपका जन्म हुआ हो। तो थोड़ा सा बताइए कि इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है, और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, टीका हैं जो इस नियमित टीकाकरण में आते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए जानने वालों।
1: जी सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न किया, इसका उद्देश्य जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हमारे ऐसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिनसे उनकी मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये टीके सरकार द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध हैं। और इनमें से जो प्रमुखता से हम 12 बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके लगाते हैं, जिसमें बच्चे की पैदाइश से लेके, जन्म से लेके और 16 वर्ष तक की आयु तक के, और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान भी उनको टीके की सुविधा मिलती है, जिससे कि उनके साथ साथ जन्म लेने वाले बच्चे को भी एक सुरक्षा कवच मिलता है।
0: मतलब एक बना हुआ है कि भाई जन्म लेंगे तो पैदा होते ही ये वाले टीके लग जाएंगे, फिर एक जो कहते हैं कि जैसे ही गर्भवती होती है, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जो वो है वो कार्ड बना दिया जाता है, उस कार्ड को आप फॉलो करते रहिए, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारी आने वाले की, नवजात की या माता बहनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, ये इसका उद्देश्य आप बता रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही इंगित भी किया कि एक जो जिसको हम टीकाकरण सारणी कहते हैं, आपने अगर रोस्टर शब्द का प्रयोग किया और साथ में आपने कार्ड की बारे में जिक्र किया, तो इसमें MCP कार्ड है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, जो हम फिजिकली कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में जो सरकार के द्वारा एक पोर्टल है, UIN पोर्टल, पूर्व में जब वो कोविड का टीकाकरण हुआ था तो कोविन पोर्टल जो है सभी लोग फेमस हुआ था,
0: जी, जी, जी,
1: उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर सरकार के द्वारा UIN पोर्टल को रोल आउट किया गया। ये पिछले 3 वर्ष से UIN पोर्टल है, और प्रत्येक बच्चे को इस UIN पोर्टल पर हम दर्ज करते हैं, जिससे कि वो हमारी देखरेख में, हमारे परव्यू में आ जाए, और उसमें जो टीकाकरण सारणी है, टीकाकरण सारणी के अनुसार फॉलोअप करके उसको टीके की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
0: जी जी जी, तो कुछ जो टीके चल रहे हैं उन पर अगर आप प्रकाश डालें कि किन किन बीमारियों से हम, कौन कौन सा टीका हमें सुरक्षित कर देता है एक बच्चे को, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सर, इसमें जो 12 बीमारियों से 11 प्रकार के टीके हैं, लेकिन अभी जब ये बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है, मानसून आ जा रहा है, और मानसून में एक जो बीमारी प्रमुखता से आती है निकल करके, गलघोटू की, जिसे आम भाषा में गलघोटू और वैसे साइंटिफिकली डिप्थीरिया की बीमारी कहते हैं।

0: जी
1: इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चे के जो है 6 सप्ताह पर, 6, 10 और 14 सप्ताह पर पेंटा की वैक्सीन लगती है। उस पेंटा में 5 प्रकार के टीके होते हैं,
0: जी
1: उसी
0: जी
1: में डिप्थीरिया का टीका भी शामिल होता है। तत्पश्चात फिर इसमें DPT बूस्टर्स की 2 डोज लगती हैं, जो 1.5 वर्ष और 5 वर्ष पर होती हैं। और इसके बाद जब बच्चा 10 वर्ष की आयु का हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु पर हो जाते हैं, तो TD का टीका। तो दरअसल ये 7 बार उसको खुराक लेनी होती है, तब जाके उसको डिप्थीरिया से बचाव मिलता है। ये पिछले 3 से 4 वर्ष की, अगर मैं जो जनपद की भी चर्चा करूं, काफ़ी बच्चे इसमें ग्रसित हुए थे और इसमें मृत्यु की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं अगर शुरुआती समय में इसको
0: नहीं लगवाया तो।
1: चिकित्सक की देख, अगर टीका नहीं लगवाया तो बीमारी होने की संभावना है। और बीमारी अगर हो गई है और सही जगह समय पर सही मतलब
0: इलाज
1: इलाज
0: नहीं।
1: ना प्राप्त किया जाए, तो फिर मृत्यु की संभावना से तब इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने अभी जैसे कहा कि भाई इसमें और भी हैं महत्वपूर्ण टीके, जो जो बीमारी है जैसे खसरा की, मीजल्स रूबेला
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हम,
0: जिसको MMR अपन नाम देते हैं उसमें।
1: जी
0: हाँ
1: MR, हमारे यहाँ MR है जिसे मीजल्स रूबेला, दो बीमारियों से बचाव के लिए टीका है। ये सर्दियों में अक्सर इसका प्रसार फैल जाता है। तो प्रमुखता से अगर इन दोनों की बात करूं, और वर्तमान में इस वक्त जो है, जब हम आज बैठे हैं दिनांक में, तो 28 जून से 6 जुलाई तक पल्स पोलियो NID अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष के सभी बच्चों को 2 बूंद की खुराक उन्हीं के घर पर पहुंचकर, हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारी कार्यकर्ताएं हैं, वो पहुंच रही हैं उनके घर में और उनको 2 बूंद पोलियो की दवा पिला रही हैं। यह कार्यक्रम पोलियो रविवार से शुरू हुआ था 28 जून से, तत्पश्चात सोमवार से लेकर और आज शुक्रवार तक घर घर जाकर के हुआ है। इस दौरान यदि कोई बच्चा किसी कारण से छूट गया है, माने कहीं उस दिन नहीं थे घर चले गए या और XYZ कारण है, तो उसके लिए फिर सोमवार को BT में एक्टिविटी होगी 6 जुलाई को हमारी, और सभी बच्चों को हम कवर करेंगे, जैसे 5 वर्ष के बच्चों को।
0: जी। तो मतलब ये पल्स पोलियो का एडिशनल आपका चक्र है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक पल्स पोलियो के लगाए जाते हैं। जन्मजात तो होता ही कि जन्म
1: जी
0: हुआ तो हम पल्स पोलियो पिला देते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल आप लेकर के आ रहे हैं।
1: जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसमें बिल्कुल क्लैरिटी करना चाहूँगा श्रोताओं को भी, कि जो हमारा नियमित राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, उसमें भी हम OPV की दवा देते हैं पोलियो की, साथ में एक टीका इंजेक्शन भी लगता है जिसे
0: जी
1: FIPV कहते हैं। वो रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब नियमित टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत है।
0: जी जी
1: उसके अतिरिक्त एक ये एडिशनल खुराक है। पूर्व में जब 10-15 वर्ष पहले साल में कम से कम 11 राउंड्स होते थे,
0: जी
1: 12 महीने
0: जी
1: में 11 राउंड्स
0: हाँ
1: होते थे,
0: हाँ जी
1: और 11 राउंड्स से मैं जो है हर हर महीने
0: जी जी
1: ये दवा दी जाती थी। लेकिन अब चूंकि पोलियो से मुक्त हो चुका है
0: जी
1: भारत,
0: जी
1: 2014 में डिक्लेयर हो चुका है कि हम पोलियो मुक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अब ये साल में एक बार राउंड होता है, और जो आप अक्टूबर नवंबर कह रहे थे पिछले वर्ष दिसंबर में हुआ था, पिछले 3 वर्षों से दिसंबर में हो रहा है,
0: जी
1: अब
0: जी
1: वर्तमान में ये इस जून के महीने में जो है किया
0: इसको
1: जा रहा है।
0: लेकर के आए
1: जी
0: इसमें।
1: सर, जी सर,
0: इसमें एक और जो आपने जोड़ा है, जिसको हम HPV बोलते हैं, ऐसी बच्चियां जो 14 साल तक की हो रही हैं, आगे उस जो पारिवारिक जीवन में जाएंगी, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं में कैंसर का जो रोग है वो काफ़ी प्रिवेल हो रहा है, और उसमें सर्विक्स वाला जो वो है वो काफ़ी निकल करके आ रहा है। तो इस पर भी चूंकि एक वैक्सीन आ गई है, क्या उसको इस टीकाकरण के कार्यक्रम से प्रशासन ने जोड़ा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी वर्ष 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का अजमेर से शुरुआत की गई थी।
0: जी
1: इसमें यह परिकल्पना की गई है सरकार के द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा,
0: जी
1: कि हमारी 14 वर्ष की बच्चियां हैं जिसका 14वां बर्थडे उसने मना लिया है,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: अभी 15वां बर्थडे ड्यू है, मनाया नहीं है, उसको यह टीका लगना है।
0: जी
1: एक ही टीका लगेगा और बाजू पर, बाई बाजू पर। और इससे टीके से फायदा क्या मिलेगा? टीके से फायदा यह मिलेगा कि बच्ची को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की
0: जी।
1: रहेगा।
0: कुछ श्रोता अब हमसे जुड़ रहे सर, उनको चाहें तो आप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, बिल्कुल
0: जी
1: सर।
0: बताइए। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
2: सर OP सर जी को नमस्कार मेरा।
0: प्रणाम कर रहा हूँ भैया, नाम बताएं।
2: सर मैं आपका एक नियमित श्रोता अशोक यादव बोल रहा हूँ, अरिंग से सर।
0: अड़िंग से सर।

0: जी सर,
1: ठीक है ठीक है, बताइए। ये कार्यक्रम नियमित टीकाकरण पर चल रहा है। रोहिताश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी या टीकाकरण अधिकारी। पूछिए क्या सवाल है आपका।
0: डॉक्टर साहब नमस्कार
2: नमस्कार जी।
0: जी। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अब प्रेजेंट में टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो
1: जी
0: सभी जानते हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो ये अवेलेबल है। जैसे कि जो पिछली उम्र में निकल चुके हैं, यानी 19 के दौर में जब इतना टीकाकरण नहीं था, तो आने वाली जैसे हमारा समय आएगा तो उसके लिए क्या हम जैसे युवाओं के लिए 25+ वालों के लिए भी कोई योजना है ऐसी टीकाकरण की, क्या प्रेजेंट के बच्चों के लिए?
2: ठीक है
1: जी,
2: मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टीके उपलब्ध हैं ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से, और एक जो एनटैगी है नेशनल जो एक जो कहना चाहिए जो एक थिंक टैंक है, और वहाँ इसका विस्तार से चर्चा होने के पश्चात फिर निर्णय किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत सरकार की, तो वहाँ ये तय होता है। चूंकि ये टीके जिस उम्र में लगाए जा रहे हैं उस उम्र में ज़्यादा इफेक्ट इनका रहता है, इसलिए उस उम्र में लगाने की इनकी एडवोकेसी की जाती है। मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि एक रोटा वायरस वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो 10 से बचाव करती है बच्चों में सर्दियों में
1: जी।
2: इसकी प्रेवलेंस 6 महीने के बच्चों में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए यह टीका 1 साल तक के बच्चों के लिए ही है। इस 1 वर्ष के बाद अगर बच्चा है तो उसको रोटा वायरस वैक्सीन टीका लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अब उसको ये बीमारी होने की इतनी संभावना
1: मतलब
2: नहीं है।
1: इम्यूनिटी वो
2: डेवलप हो जाती है, सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो गई, सर्वाइव कर गए तो सेल्फ इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई। लेकिन आपने कहा कि जो बड़े हो गए व्यस्क हो गए तो उसमें भी है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो महिलाएं हैं जो गर्भवती होती हैं तो उनको टीडी का वैक्सीन लगता है जिससे कि उनको टिटनेस से बचाव मिले। देखिए पूर्व में जब आपने बहुत पहले जानते होंगे कि टिटनेस के बच्चे पैदा हुए और उनको टिटनेस की शिकायत मिली, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। हम पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, टिटनेस से मुक्त, न्यूनेटल टिटनेस से मुक्त हो चुके हैं। तो ये
1: क्योंकि वो गर्भवती महिला को ही लग जाता है, तो बच्चे
2: बच्चों को भी नहीं जाता। तो इसलिए इसमें अब जब पूर्व में कोविड हुआ था तो कोविड में आप जानते हैं सभी को टीके की सुविधा गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई थी, भविष्य में अगर किसी तरह का रहता है तो वो सभी के लिए होगा तो ऐसा हम सोचते हैं
1: जी। जी इसमें डॉक्टर साहब मतलब ये बड़ों के इस बारे में पूछ रहे थे, हम बात कर रहे थे HPV वैक्सीन 14 साल की बच्चियों वाले पे, इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए जी।
2: बिल्कुल सर, ये वैक्सीन जो है नई वैक्सीन नहीं है
1: जी,
2: पूर्व में ही सन 2008 से हम इस वैक्सीन को ले रहे हैं और ये 155 देशों में इस वैक्सीन को दिया जा रहा है
1: जी। एक श्रोता फिर से जोड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो साहब, मैं राजकुमार सैनी बोल रहा हूँ बिरला मंदिर क्षेत्र से।
1: जी जी बताइए राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हैं?
3: मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं
1: हाँ।
3: ये इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जैसे हम अनुमान देखते हैं कि बच्चों में साइड इफेक्ट हो जाते हैं कुछ, मतलब बुखार तेज आ जाता है?
1: कौन सी वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप? ये बच्चियों की बात कर रहे हैं?
3: जी जी
1: जी जी
2: हाँ। देखिए ये 14 वर्ष की बच्चियों के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है ये पूरी तरह से सेफ है। 155 देशों में इस वैक्सीन को दी जाती है। गार्डासिल 4 है, सन 2008 से इसको दिया जा रहा है, पूर्णतः सेफ है ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए क्या होता है, 14 वर्ष की बच्चियां अभी समझदार उतनी हो रही होती हैं, उतनी समझदार नहीं होती हैं। अभी क्या होता है, सुई वाला टीका लगना है और बाहर वो कमरे के बाहर बैठी हैं और सुबह नाश्ता करके नहीं आई है मान लीजिए, और गर्मी भी पड़ रही है, पसीने भी आ रहे हैं और थोड़ा सा उमस हो रखी है, और वो उन्होंने देखा कि अंदर जाने से पहले ही टीका लगा और वो ऐसे लगा कि ये जो है गिर गई, तो क्या होगा कि टीके से गिर गई, ऐसा नहीं होता है। दरअसल हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि नाश्ता करके आए, पेट अपना वो हो और थोड़ा सा अलग बैठे, मतलब टीके को देखते देखते भी उनको चक्कर आने लग जाते हैं बच्चियों को।
1: हाँ, कई बार ऐसा होता है
2: जो
1: और फिर ये लगता ही है कि शायद
2: उससे हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको टीके को देते हैं
3: के माध्यम से लग रहे हैं या फिर ये जिला अस्पताल में जाकर के लगेंगे, क्या इसका मतलब कैसे?
2: मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए आपने अभी पूछा कि इससे कुछ परेशानी हो सकती है
1: जी,
2: तो हल्का फुल्का बुखार या हल्की सी वहां ये हो सकती है, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल की दवाई भी हम डिस्पेंस करते हैं। आपने पूछा अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि अब सुविधा कहाँ उपलब्ध है, तो ये दोनों ही तरीके से सुविधा उपलब्ध है, जिला अस्पताल में और हमारे जो 12 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं हमारे 10 ब्लॉक में है, जैसे वृंदावन CSC पर भी है
3: जी सर।
2: तो यहाँ जो है हर दिवस में हम इसको प्रयास कर रहे हैं टीके को लगाने का। दूसरा हम ये जो है तीसरे शुक्रवार को जो समाज में ही जाकर हमारा वैक्सीनेटर समाज में ही

0: बैठता है, कम्युनिटी में ही बैठता है, और वहाँ वो पहले से ही यूविन एक ऐप है, यूविन ऐप पर आप जाकर के देख सकते हैं कि नज़दीक में कहाँ पे टीके लग रहे हैं। जैसे कोविड में हम एक अपॉइंटमेंट ले लेते थे और हम अलॉट करा लेते थे अपने लिए कि हम यहाँ जाएंगे और जाएंगे बताएंगे।
1: आधार आधार कार्ड के लिए जो चल रहा है सिस्टम, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और वो
2: अच्छा
1: जी
2: डॉक्टर साहब यही पूछ लूँ, अशोक जी ये राजकुमार जी से ही जुड़ा हुआ है, इसमें कोई कुछ कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्या, उसमें
0: हाँ
2: कोई एज
0: इसमें
2: सर्टिफिकेट या कोई आधार वाधार कुछ
0: हाँ
2: ऐसा?
0: इसमें देखिए आधार है तो आप आधार से, आधार के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में जाकर के स्वयं का अपना रजिस्ट्रेशन करके और आप अपॉइंटमेंट ले लें, फिर आपको कोई आधार वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और उसमें आपके पास जो भी ओटीपी पहुंचता है वो आपने लिया है, तो जिससे कि आपकी कंसेंट भी आ जाती है उसी में। लेकिन अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो आधार ले जाएं, जिससे वो यूविन पर आ जाएगा और आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि आपने ये टीका
2: अगर अच्छा
0: लगवाया।
2: कोई
1: तो
2: रजिस्ट्रेशन
1: अभी
2: नहीं
1: अभी
2: हुआ
1: साहब
2: तो
1: मेरी क्या
2: डायरेक्ट
1: है,
2: भी जा
1: 14 साल
2: सकते हैं
1: की
2: इसमें?
1: बच्ची है,
0: हाँ जी
1: अभी 14 साल की मेरी बच्ची है,
2: हाँ
1: तो मैं उसको लगवा सकता हूँ?
0: 14 वहां बर्थडे उसने मना लिया है, ये मनाएंगी अभी
1: अभी मनाएगी सर,
0: कितनी तारीख को?
1: ये आई थिंक उसमें मनाएगी अगस्त में,
0: ठीक, कितनी अगस्त को?
1: करीब 17 अगस्त को।
0: 17 अगस्त को, वो 17 अगस्त को जब बर्थडे मनाएंगी तो 17 अगस्त से ही उनको वो इसकी लाभार्थी हो जाएंगी। 18 अगस्त को ही आप जाएंगे तो उनको वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि यूएन पर पोर्टल पर वो 17 अगस्त से पहले, जैसे आज जाएंगे, आज आज आप
1: जी
0: बैठे हुए हैं हम 3 जुलाई में,
2: हाँ
0: तो वो यूएन पोर्टल पर लेगा ही नहीं और हमारा वैक्सीनेटर उसको टीका नहीं तब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिफिक मेथड है जिससे कि हम 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को ये टीका उपलब्ध हो पा रहा है।
2: जी
1: तो साहब जी मतलब जीवन भर बच्ची मतलब ये सुरक्षित
0: जीवन भर
1: महसूस
0: रहेंगी।
1: रहेगी?
0: देखिए आप, मैं बताऊं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कि जो महिलाओं में कैंसर है सबसे, जो ये दूसरे नंबर का कैंसर है, पहला उनकी छाती का कैंसर, स्तन कैंसर, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। और 30 वर्ष की उम्र के पश्चात किसी भी महिला को होने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं, और
1: जी
0: जो
1: साहब बिल्कुल
0: 97-98% केसेस में वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और ये वैक्सीन अगर इन बच्चियों को अभी से लग जाती है तो उनको वो एक्सपोजर होने पर इम्यूनिटी रहेगी, तो वो
1: जी साहब
0: ऐसी इनको ये कैंसर होने की, डेवलप होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी।
2: मतलब बहुत एक
1: धन्यवाद
2: संभावना
1: साहब
2: है
1: डॉक्टर
2: उसको
1: साहब,
2: खत्म हम कर रहे
0: बिल्कुल
2: हैं
0: बिल्कुल खत्म
2: और
0: कर रहे हैं सर
2: सुरक्षा
0: हम।
2: जीवन में मिल रही है, तो
0: अगर
2: ये
0: सर
2: बहुत बड़ा कदम जो है।
0: एक बच्ची को अगर भविष्य में इस तरह कैंसर की स्थिति हो रही है, तो वो बच्ची ही नहीं, जब वो एक 35-40 वर्ष की होगी तो
2: परिवार
0: उसके परिवार, उसके परिवार के भरण पोषण
2: में
0: पर
2: जी
0: और
2: जी
0: उसके आमदनी पर सब पे इम्पैक्ट रखती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और कैंसर तो एक बीमारी भी ऐसी जिसको देख करके ही व्यक्ति
0: बिल्कुल
2: को
0: बिल्कुल
2: ऐसा
0: सर,
2: लगता है उसमें, तो एक बहुत बड़ा कदम है। हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जो ये HPV वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर तेवतिया बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन तरीका यही है कि 14 साल की अगर बच्ची आपकी हो रही है तो फिर पूरा 1 साल पड़ा हुआ है उसमें, तुरंत उसको जाएं रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका लाभ उठाएं उसमें। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे कि मैं दूसरी उस पर आ रहा हूँ, एक हमारे श्रोता हमसे जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लिख रहे हैं कि छोटे बच्चों को कितनी उम्र तक कितने टीके लगने चाहिए, प्रकाश जैन ने नांदेड़ से। डॉक्टर साहब ये हमारा कार्यक्रम व्हाट्सएप पे पूरे ऑल ओवर इंडिया सुना जा रहा है,
0: ओके
2: तो ये कहीं से भी प्रश्न आ
0: प्रश्न
2: सकता है,
0: सकते
2: ये
0: हैं,
2: महाराष्ट्र से आया है लेकिन हम मथुरा में बैठ के
0: मैं बिल्कुल उनको भी
2: बात।
0: जवाब देना
2: जी
0: चाहूंगा।
2: जी जी
0: उन्होंने जब कहा कि छोटे बच्चों को कितनी बार टीका लगना चाहिए, देखिए इसमें जो अमिताभ बच्चन जी का एक आता है, आपने सुना होगा कि 5 साल 7 बार,
2: जी जी
0: तो 5 साल तक के बच्चों को 7 बार टीका लग जाना चाहिए।
2: हाँ
0: उसके पश्चात फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु पर दो और जोड़ दीजिए, तो कुल 9 बार बच्चों को टीका लगता है। और अगर बच्ची फिर भविष्य में वो गर्भवती होती है, मतलब शादी के होती है और पश्चात में
2: जी
0: गर्भवती होती है, तो उसे गर्भावस्था के दौरान टीके, तो
2: जी
0: छोटे बच्चों में हम 5 साल में 7 बार का टीका,
2: पांच सात आप याद
0: पांच
2: रखिए कि
0: साल में
2: 5 साल
0: सात
2: तक
0: बार
2: 7 टीके
0: सात
2: लगेंगे
0: टीके
2: और दो फिर जो है बाद में जो
0: बाद में
2: बूस्टर डोज
0: बूस्टर
2: रहती है
0: डोजेज
2: डोज
0: लगती
2: रहती
0: हैं।
2: है।
0: जी जी
2: और इस तरह के जो चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, जैसे अभी ये HPV वाला आया कि 14 साल तक की जो बच्चियां हैं वो ले सकती हैं,
0: बिल्कुल
2: तो
0: सर,
2: वो फिर एडिशनल होता जाता है,
0: एडिशनल
2: चलता जाता है, तो
0: ये सर जो
2: उसमें
0: एचपीवी वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, यही सेम वैक्सीन गार्डासिल-4 आप बाजार में जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार की कॉस्ट में पड़ता है ये,
2: बताइए बताइए।
0: और ये
2: ओके
0: सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराएगा,
2: निःशुल्क
0: सेम वही
2: रहा।
0: वैक्सीन है
2: हाँ हाँ
0: गार्डासिल-4।
2: तो मतलब ये एक बड़ा कार्यक्रम लेकर के आई, तो ये जो जो एक जिसको हम कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा धन है, और जो चीज़ें सरकार मान के चल रही है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, परिवार की किसी भी परिवार में अगर कोई बीमारी आती है तो वो पूरा परिवार उसको भुगतता है, चाहे आर्थिक रूप से एक व्यक्ति तो शारीरिक रूप

0: से उसका वो कर रहा है, लेकिन पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, समय का खराब होना, मानसिक परेशानियां, तो ऐसी बीमारियां ना हो, और जिसमें कैंसर की तो बहुत बड़ी बात है
1: बिल्कुल
0: इसमें,
1: सर,
0: तो बहुत बड़ी सुरक्षा सरकार लेकर के आई है।
1: बिल्कुल सर। इसमें जो
0: जी
1: है हमारे यहाँ जनपद मथुरा की बात करें तो हम लोगों को जो हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 31,000 से अधिक बच्चियों को ये
0: हाँ
1: टीके से जो है आच्छादित करेंगे।

0: ये टीके से जो है आच्छादित करेंगे। 31,446 हमको बताया गया है जो हमारी जो आबादी का 1% जो है इतनी उम्र की बच्चियां होंगी,
1: मतलब 14 साल की लगभग
0: इतनी
1: इतनी
0: बच्चियां हमारे
1: बच्चे,
0: जनपद में
1: और
0: होंगी,
1: सबको ही हमें
0: सबको
1: लगाना है,
0: लगाना
1: ये
0: है।
1: हमें हंड्रेड परसेंट टारगेट है। तो और हर साल जो बच्ची 14 साल की होती
0: जी
1: जाएगी
0: उसको लगते
1: उसको
0: रहे
1: फिर, तो
0: लगते
1: इस
0: रहे।
1: तरह से एक तरह से सोसाइटी में हम सर्वाइकल कैंसर की इम्यूनिटी
0: इम्यूनिटी
1: पैदा
0: डेवलप कर लेंगे, हर्ड
1: जी।
0: इम्यूनिटी हो जाएगी हमारी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर किन्हीं बच्ची ने पूर्व में अगर टीका लिया हुआ है तो वो भी अपना यूएन पर रिकॉर्ड चढ़वा दें, उनको आवश्यकता नहीं है टीके की, लेकिन वो रिकॉर्ड भी उनका आ
1: रिकॉर्ड
0: जाएगा,
1: आ जाएगा
0: रिकॉर्ड आ जाएगा,
1: उसमें कि
0: डिजिटल
1: भाई
0: उसमें आ
1: हमारी
0: जाएगा।
1: जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं
0: हाँ, तो
1: उसमें
0: जानकारी
1: हम
0: में आ जाएगा कितनी बच्चियाँ कवर हैं और कितनी नहीं है।
1: कुछ और कहना चाहें चलते चलते, जो है कोई श्रोता उससे जुड़े पहले, आप टीकाकरण के संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उसमें व्यक्तियों से क्या अपील करना चाहेंगे, श्रोताओं से आप क्या
0: सर
1: अपील
0: पहले सर
1: करेंगे?
0: आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी को अब बताने के लिए मौका दिया। मैं सभी श्रोताओं से हार्दिक अपील यही करूँगा, एक निवेदन कि ये जो टीका है ये जो जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए है, और जब वो बीमारी हो जाती है तो और ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आप जो है उसको अस्पतालों में यहाँ और वहाँ लेकर के जा रहे हैं, फिर भी जो है उसमें बच्चे की जान जाने की जोखिम रहती है, उससे अच्छा है कि आप समय से जो टीका सारणी के अनुसार है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आपके क्षेत्र की ANM अथवा वहाँ की आशा आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें, और संपर्क करने के पश्चात जो उनके टीके छूटे हुए हैं वो टीके अवश्य लगवाएं। और अगर जैसे पेंटा का टीका लगता है या DPT लगता है तो उसमें बुखार की संभावना रहती है, तो उसके लिए हम पैरासीटामोल सिरप इसीलिए डिस्पेंस करते हैं कि अगर अगले एक दिन 2 दिन में बुखार या कुछ इस तरह का आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर पेंटा 1 लगवाया टीका हमने और हल्का बुखार आया तो फिर 4 हफ्ते बाद पेंटा 2 टीका लगना है, तो आप
1: हाँ
0: ऐसे इससे घबराएं नहीं और टीके अपने समय से पूरे करवाएं।
1: जी। डॉक्टर साहब आपकी बात को शीतल यादव वृंदावन से उन्होंने सुना है और उस पे को प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है कि 5 साल 7 बार की बात ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर कोई टीका लगने से छूट जाता है तो बाद में भी क्या लगवाया जा सकता है, उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा बाद में लगवाने का ये?
0: बिल्कुल, इसमें देखिए जो मैंने शुरू में ही बताया जो हमारा NTAGI ग्रुप है और इसमें हमें जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के अनुरूप हम उनको इसका पालन करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई टीके छूट गए हैं तो भी आप परेशान ना हो, आपके उसके बाद उसकी उम्र के सापेक्ष में जो टीके लगने चाहिए वो टीके उसको निःशुल्क आपके नज़दीकी चिकित्सा इकाई या आपके समाज में जो टीके का हमारा छाया VHSND सत्र होता है, हर बुधवार शनिवार को टीके लगते हैं, आप ही के क्षेत्र में लगते हैं, और जहां पूरे जनपद में आप जहां भी निवास करते हैं वहां एक माइक्रो प्लान के अनुसार उस महीने में एक बार बुधवार या शनिवार को आपके यहाँ हमारा जो है ANM आशाएं वहाँ बैठती हैं, आंगनवाड़ी दीदी की मदद लेती हैं और उनको घर से बुलाकर एक नियत जगह पर टीके लगाती हैं। तो
1: जी
0: किसी
1: जी
0: प्रकार का कोई टीका छूट गया है तो वो टीका लग सकता
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि समय तो थोड़ा सा कम रह रहा है उसमें, कि बीच में एक बड़े लोगों के लिए भी हेपेटाइटिस B और इनके भी कुछ टीके आए थे, क्या वो भी अभी भी है, लोगों को उससे सुरक्षा ले लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार आदमी लगता है अब तो मैं तो स्वस्थ हो गया, बड़ा हो गया, अब शायद मेरे को कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, विकसित होती रहती है, तो हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा चलते चलते बताना
0: बिल्कुल
1: चाहें?
0: सर, इसमें हेपेटाइटिस B जिसमें पीलिया से बचाव का है, लीवर में ये फ्यूचर में लीवर के कैंसर से बचाव भी करती है, ये भी राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में है उपलब्ध, ये बच्चों के लिए है। तो पैदाइश पर जो टीका लगता है, पहला टीका जो पैदाइश पर लगता है 24 घंटे के भीतर, वो हेपेटाइटिस B का ही टीका लगता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और बाद में उसको 3 टीके और मिल जाते हैं पेंटा 1 के साथ, पेंटा के साथ में 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 16 सप्ताह की उम्र, 14 सप्ताह की उम्र में।
1: जी जी
0: तो लेकिन जो वयस्क हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, हमारे अस्पताल में सभी को हमने लगवाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ये टीकण कार्यक्रम में बच्चों के लिए उपलब्ध है।
1: जी जी चलते चलते एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: राधे राधे
1: राधे राधे भैया, नाम बता दीजिए।
2: मैं आनंदगंज से बोल रहा हूँ, मथुरा से, मानिक चंद
1: मानिक चंद आनंदगंज से।
2: जी। मेरी 2 खन 70 साल की उम्र है।
1: जी जी बताइए।
2: अभी ऐसी कोई मतलब

0: आगे कोई बीमारी का चांस हो सकती है क्या?
1: नहीं, हम तो टीकाकरण की बात कर रहे हैं। आपकी 68 साल उम्र आप बता रहे हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए।
0: ये जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब 2-3 किलोमीटर रोज चलता हूँ ज्यादा,
1: हाँ ये तो अच्छी बात है, 2-3 क्या 5 किलोमीटर चलिए।
0: तो थोड़ी सी मिर्ची खाने में परेशानी होती है। मतलब
1: अच्छा, मतलब खाने में या मिर्च खाने में, क्या क्या कह रहे हैं आप।
0: खाने में मतलब लाल मिर्च खाते हैं ना
1: हाँ तो मत खाइए, हरी मिर्च खाइए, काली मिर्च खाइए, दखनी मिर्च खाइए, क्या
2: आप कहाँ
1: परेशानी है।
2: निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं।
0: तो ये जानकारी चाहता हूँ, कोई बीमारी तो नहीं है ये
1: नहीं
0: लाल
1: नहीं
0: मिर्च?
1: नहीं नहीं ये
2: अच्छी,
1: चाहिए।
2: आप ये बताइए आप कहाँ निवास करते हैं।
0: राधे राधे
2: राधे राधे।
1: राधे, ये आनंदगंज की बात कर रहे हैं, मथुरा
2: आनंदगंज
1: की,
2: मतलब
1: मथुरा की
2: मथुरा में
1: बात।
2: ही।
1: हाँ
2: आपको अगर फिर भी कोई संशय है तो
1: हाँ
2: आप जिला अस्पताल आकर के या नज़दीकी शहरी जो PSC है, हमारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं। हमारी जो 10 PSCs हैं वृंदावन कोसी कला के अलावा, 8 यहीं पर हैं। एक रूपम टॉकीज के सामने हैजा हॉस्पिटल के
1: हाँ
2: नाम से है, और बलदेवपुरी जो है जयगुरुदेव के पास में, BSA के पास में सुखदेव नगर, इस तरह से 10 PSCs हैं। आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से परीक्षण करा सकते
1: जी
2: हैं,
1: जी तो वैसे भी 60+ में, 50+ में तो एक नियमित जांच
2: जांच
1: वो
2: होना
1: अपने
2: चाहिए।
1: परिवार के
2: हाँ
1: लोग कराते हैं। ये तो आप आनंद लीजिए जो है, और जो है घूमते ही अच्छी बात है। चलते चलते एक गीत के साथ हम छोड़ जाते हैं जो है लोगों को, कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर रोहितास तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आपने अपने अनुभव की बात, जानकारी की बात, और जो टीकाकरण का एक नियमित तो रोस्टर है उसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन ये हम सब के लिए और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको, और जो नए चीज़ें जुड़ती हैं जैसे 14 साल की बच्चियों के लिए एक वरदान के रूप में HPV वैक्सीन का जो ये कार्यक्रम जुड़ा है, इसका लाभ ज़रूर लें, और अपनी बच्चियों को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से जब वो पारिवारिक जीवन में जाएंगी बचाव का एक सुरक्षा कवच अवश्य ज़रूर उनको पहनाएं। डॉक्टर तेवतिया आप आए, जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।

और SMS कार्यक्रम में सुना हमारा सजीव विशेष फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रम का विषय था राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर रोहताश तेवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। इनसे बातचीत कर रहे थे OP सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गिरीश कुमार सहगल के गाए कुछ लोकगीत।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
4: आराम से मैडम.
0: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
6: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर. कार्यक्रम में हमारे आज कलाकार हैं गिरीश कुमार सहगल. आइए इन्हीं का गाया एक और ब्रज लोकगीत सुनवाते हैं आपको.

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गिरीश कुमार सहगल के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। इस समय 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय

0: राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ परिवार और महिलाओं की जिम्मेदारी। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा महिलाएं कैसे रखें बच्चों की देखभाल।

इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर नीता सिंह द्वारा प्रस्तुत विज्ञान वार्ता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारी शक्ति। इसके अतिरिक्त आप सुन पाएंगे कुछ फिल्मी गीत और घरेलू टिप्स हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:30 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र और वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी जिसका शीर्षक होगा मन की जीत। प्रस्तुति होगी अरुण कुमार शर्मा की। किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जलवायु परिवर्तन में फसलों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण और खेतों में वर्षा जल का संरक्षण। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गोपाल सिंह से ली गई भेंट वार्ता जिसका विषय होगा मक्का और बाजरा की खेती। इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। इसके अलावा आप सुन पाएंगे कुछ ब्रज लोकगीत और मौसम का हाल हमारे इसी कार्यक्रम में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में शाम 7:05 पर आज आप सुन पाएंगे ब्रज नवकथा 16 आर्य सच। नवकथा प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप नवरंग कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं रात्रि 9:15 से रात्रि 10:00 तक। आज रात्रि 10:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे सुखवीर सिंह निम्बार्क के गाए गीत और भजन और सुनील चौहान की गाई चंद गजलें। इसके अलावा रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों का शहनाई पर बजाया राग केदार। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में ये देशभक्ति परक गीत.

समवेत स्वरों में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रेशमा अग्रवाल।

हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को, सखियों को, आपकी सखी, आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, अब शुरू करते हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक आज की चर्चा के साथ। बहनों, स्वच्छ पर्यावरण सभी को अच्छा लगता है, और अच्छा लगने का कारण भी है क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण केवल प्रकृति की आवश्यकता नहीं बल्कि स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। बहनों, जब हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है तो आप देखती हैं कि बीमारियां कितनी कम होती हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ जल उपलब्ध होता है तथा जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनती है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है, लेकिन इसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहनों, महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे घर में स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती हैं। यदि घर की महिलाएं बच्चों को कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने, पानी की बचत करने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने और पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा दें, तो ये संस्कार आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत स्वच्छ रसोई, शुद्ध भोजन, साफ पेयजल और व्यक्तिगत स्वच्छता से ही होती है। महिलाएं परिवार के खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती हैं। जैसा कि बहनों, आपसे और हम सबसे ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा, क्योंकि हम माता बहनें यानी महिलाएं समय समय पर घर की सफाई, पौष्टिक भोजन तैयार करना और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना परिवार को अनेक बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। महिलाएं परिवार के खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती हैं। आज महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न अभियानों के माध्यम से वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान और स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, और साथ ही साथ भाग लेने के साथ साथ सभी को यानी समाज को जागरूक भी कर रही हैं। बहनों, यह भागीदारी समाज को सकारात्मक दिशा दे रही है। हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को अपनाते हैं, तभी स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होता है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। बदलें हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। बहनों, चर्चा के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी आज यह संकल्प लें कि अपने घर, अपने आसपास और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ परिवार और उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है, और आप सभी इसको अच्छे से आज के समय में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करते हुए सभी एक एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, यह हम सभी को आज ही संकल्प अवश्य लेना होगा, क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ ही है हमारी जान, पेड़ों की रक्षा करो, इसमें ही है सबकी शान। और इसी के साथ आप सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

नई सदी ये पूछ रही, काम कौन सा नेक, तपती धरती यह कह रही, पेड़ लगाओ एक। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों को बना लेती है दुनिया सारी. अपनों का जीवन और घर रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी. जी हाँ बहनों, नारी एक ऐसी शक्ति है जो अपने घर परिवार के साथ साथ अपने समाज व देश व पूरी दुनिया को रोशन करती है. नारी शक्ति ने अंतरिक्ष से लेकर चिकित्सा तक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसी स्टीम आदि क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. आप देख सकते हैं, इतिहास से लेकर आज तक महिलाओं ने विज्ञान की दुनिया में भी बड़े बड़े बदलाव किए हैं जो हम सभी से छिपे नहीं हैं. तो बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि नारी शक्ति के लिए अब कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है. तो चलिए, इसी क्रम में हम आपको और विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं विज्ञान वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारी शक्ति. और वार्ताकार हैं डॉक्टर नीता सिंह.
4: नारी शक्ति योगदान की बात करें तो इतिहास एवं पौराणिक कथाएं गवाह हैं कि समाज कल्याण हेतु स्त्रियों ने न जाने कितने ही त्याग एवं बलिदान दिए हैं, किंतु स्वयं को ज्यादा गृहस्थी में व्यस्त रखने के कारण महिलाओं का योगदान विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में कम रहा है. बढ़ते आधुनिक युग में महिलाओं ने खुद को नए जमाने के नए सांचे में ढालने का प्रयास किया है. इसीलिए तो जहाँ पहले महिला चिकित्सक न होकर कोई और पद अच्छा समझती थी, लेकिन आज बहुत सी महिलाएं चिकित्सक के पद पर विराजमान हैं. जहां पहले महिलाएं प्रौद्योगिक क्षेत्र में जाने से कतराती थीं, वहीं अब विश्व में महिलाएं प्रौद्योगिक क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयास से जगत कल्याण में अपना योगदान दे रही हैं. खगोलीय क्षेत्र, अभियंता क्षेत्र, उद्योग कला एवं विज्ञान के अनेकों क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं को पहले समाज की कम

जो उर्कड़ियां समझकर नकारा जाता था, वहीं आज विश्व भर के बड़े बड़े प्रायोजन महिलाओं की वजह से ही साकार हो पाए हैं। नारी वास्तव में ही शक्ति का स्वरूप है एवं नारी शक्ति किसी भी कार्य में पुरुषों से पीछे नहीं है, फिर चाहे वो क्षेत्र कारोबार का हो, खेल और शिक्षा का हो या फिर विज्ञान का। नारी हर रूप में पुरुष की संगनी रही है। दोनों ही समाज में समान स्तर पर हैं। एक के होने से ही दूसरे की महत्ता है। पुरुष से नारी एवं नारी से ही पुरुष का मोल है। ये दोनों ही समाज के वो पहलू हैं जिन पर हमारा आने वाला भविष्य टिका हुआ है। मैं अवला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं सशक्त आधुनिक नारी हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया, मैं शिक्षा और खेल जगत में पुरुषों पर भी भारी हूँ, मैं सशक्त आधुनिक नारी हूँ, मैं सशक्त आधुनिक नारी हूँ। जैसा कि हम सभी भलीभांति जानते हैं कि महिलाएं आज के नए दौर में किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का या कारोबार का या व्यवसायिक क्षेत्र। किंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2,00,000 लोगों में से 14% ही महिलाएं हैं, जिनका कारण है कि महिलाओं को सामाजिक बेड़ियों में जबरन जकड़कर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। सामाजिक कुरीतियों के चलते प्रतिभा संपन्न होते हुए भी महिलाएं प्रौद्योगिक गतिविधियों से वंचित रह जाती हैं। जहां कहीं महिलाएं समाज की लगाई गई बेड़ियों को अपना लेती हैं, वहीं कुछ महिलाएं सामाजिक बंधनों को खोलकर संसार में मिसाइल कायम करते हुए समाज को एक नई दिशा देती हैं। ऐसी स्त्रियां ही वास्तव में नारी शक्ति का प्रतीक हैं और वास्तव में ये ही समाज कल्याण का कारण बनती हैं। इन्हीं में से कुछ हैं कल्पना चावला, टैसी थॉमस, अनीता सेन गुप्ता, सुनीता विलियम्स, रितु करधाल, मेरी क्यूरी, आनंदी बाई जोशी इत्यादि। कल्पना चावला जो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शटल मिशन विशेषज्ञ थी, कल्पना चावला अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। टैसी थॉमस भारत की एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक है। इन्हें भारत की मिसाइल महिला का भी दर्जा प्राप्त है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अग्नि चतुर्थ की परियोजना निदेशक एवं सिस्टम की महानिदेशक रह चुकी हैं। अनीता सेन गुप्ता एथरोस्पेस इंजीनियर है। ये भी भारतीय मुल्क नासा में कार्यरत वैज्ञानिक महिला है, जिन्होंने अपने कार्य से जगत में अपनी और महिलाओं की एक नई गरिमा बनाई है। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इन्होंने एक महिला यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां रितु करधाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ काम करने वाली एक महिला है, जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। मेरी क्यूरी विख्यात भौतिकवाद और रसायन शास्त्री थी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक है। इनकी दोनों बेटियां भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। जहां असीमा चटर्जी ने रासायनिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया, वहीं मेरी जैक्सन ने गणितज्ञ के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई। आनंदी बाई जोशी जो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, उन्होंने स्त्री जाति को एक नई दिशा दी। वैलेंटिना थेरेस्कोवा विश्व की सबसे पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। ये 400 से भी अधिक आवेदकों में से चुनी गई थी। एशिया से अंतरिक्ष तक का सफर तय करने वाली थेरेस्कोवा ने विश्व में एक मिसाइल कायम की। पैगी बिटसन भी एक अमेरिकन शोधकर्ता हैं, जो जैव रासायनिक क्षेत्र में नासा के लिए कार्यरत हैं। एलिजाबेथ ब्लैकबेल एक ब्रिटिश

0: चिकित्सक थीं जो संयुक्त राज्य में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। विज्ञान के क्षेत्र में कई महिलाओं ने भी अहम योगदान दिया है, जिनके चलते उनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है, जिन्होंने अपनी सफलता के दम पर विज्ञान से जुड़े दुनिया भर के कार्यों में संस्थानों का नाम किया। आज ऐसी ही पांच महिलाओं के बारे में जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। किरण मजूमदार। भारत में जन्मी मजूमदार ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह वायोकेन की संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। गोयन शॉर्टबेल। स्पेस एक्स की अध्यक्ष गोयन की विशेषता एप्लाइड मैथ में भी है। स्पेस एक्स कंपनी स्पेस तकनीकी पर काम करती है। ये कंपनी खासकर स्पेस ट्रांसपोर्ट में खर्च को कम करती है। फाबियोला जानोती। इन्होंने दुनिया को बताया कि प्रकृति में व्यापक पैमाने पर पार्टिकल्स क्यों हैं। 2016 में फाबियोला दुनिया के अहम विज्ञान केंद्रों में से एक स्विट्जरलैंड के यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में जानी जाती हैं। ऐसे ही आगे दो और महिलाएं, जिनमें से क्रिस्टिना फिगेरस। इनके लिए प्रकृति इनका पहला घर है, इसीलिए वह विज्ञान से प्रेम करती हैं। 2015 में पेरिस ऐतिहासिक जलवायु समझौते में इनकी अहम भूमिका रह चुकी है। मार्गरेटा चान विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक रह चुकी चीनी फिजिशियन मार्गरेटा ने रोगाणु रोधक को लेकर विशेष काम किया। ये सांस संबंधी बीमारियों और बर्ड फ्लू की विशेषज्ञ के तौर पर जानी जाती हैं। अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र में अलग अलग योगदान देने के साथ साथ महिलाएं प्रौद्योगिक क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। अनेकों प्रकार के शोध में उपयोग होने वाले यंत्रों को महिलाओं द्वारा ही सृजित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों में भी महिलाओं की भारी हिस्सेदारी है। जहां युवा वर्ग में भारत में महिलाओं डॉक्टरों की हिस्सेदारी 51% है, वहीं अमेरिका में 60%। महिलाओं की वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी से नहीं समाज में सुधार की उमंगें आना शुरू हुई हैं, बल्कि नारी सशक्तिकरण के साथ समाज को एक नई दिशा मिली है। जहां पहले महिलाएं अंतरिक्ष यात्री न के बराबर थीं, वहीं अब नासा में तकरीबन 14% अंतरिक्ष यात्री महिलाएं ही हैं, जो साक्ष्य इस बात का कि महिलाओं का योगदान वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं महिलाओं की उपलब्धियां गिनाने बैठूंगी तो सारा वक्त इसी कार्य में व्यतीत हो जाएगा, इसलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं सशक्त आधुनिक नारी हूँ। मैं सशक्त आधुनिक नारी हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारी शक्ति। वार्ताकार थी डॉक्टर नीता सिंह। और बहनों, अब ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया को, दुनिया की ओर। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, और वो प्रस्तुत हैं कुछ इस तरह। जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए, जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि प्रभु को पसंद आए।

बहनों, बच्चे हमारे घर में जब खिलखिलाते हैं तो हमें कितने अच्छे लगते हैं। यानी बच्चे किसी भी परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं। उनका स्वस्थ सुरक्षित

शिक्षित और संस्कारित जीवन परिवार तथा समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। बच्चों के पालन पोषण में परिवार के सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माँ और परिवार की महिलाओं का योगदान विशेष माना जाता है, क्योंकि बहनों उनका स्नेह, धैर्य और मार्गदर्शन बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में गहरा प्रभाव डालता है। बच्चों की देखभाल की शुरुआत उनके स्वास्थ्य से होती है, यानी जन्म से समय से ही टीकाकरण, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को स्वच्छता की आदतें जैसे हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और स्वच्छ भोजन करना बचपन से ही उन्हें सिखाना आवश्यक है। इसके साथ साथ आज के समय में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहनों उतना ही जरूरी हो गया है। महिलाओं को चाहिए कि बच्चों से प्रतिदिन खुलकर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनकी छोटी से छोटी और बड़ी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें और उनका समाधान करें। यदि बच्चों को घर पर प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का वातावरण मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा केवल बहनों विद्यालय तक सीमित नहीं होती, घर ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और उसकी माँ पहली शिक्षिका। बच्चों को अच्छे संस्कार, सत्य बोलने की आदत, बड़ों का सम्मान, अनुशासन, समय का महत्व और दूसरों की सहायता करने की भावना घर से ही मिलती है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और टेलीविजन के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों के स्क्रीन समय पर भी ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वे बच्चों को खेलकूद, पुस्तक पढ़ने, चित्रकला, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। इससे बहनों उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और महिलाएं भी स्वस्थ रहें, क्योंकि जब वो खुद खुश रहेंगी तभी बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगी। तो बहनों हमारा समय हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए रेशमा अग्रवाल का नमस्कार।

0: अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं, वनिता लोक। कार्यक्रम प्रस्तुत किया रेशमा अग्रवाल ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत।
1: ये जो चिलमन है

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है शर्मीली। शब्द रचना नीरज की है, संगीत SD बर्मन का।

0: Jharkhand till tomorrow. Meanwhile, the Met Department has said that Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya will experience hot and humid conditions till Monday. With Soumya Sharan, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihan Mumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
2: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and Harbour Railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
5: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ आप आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
6: जो प्रशासन ने

0: बखूबी बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेश बाक्षा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है।

सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे

0: देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका

0: उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम एफएम और डीटीएच के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी।
0: सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
3: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं,

0: या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है?
1: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
6: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
6: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
6: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
6: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष?
6: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
6: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा,
6: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
4: ये किस भाषा में है?
6: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
4: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
6: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
4: अच्छा।
6: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
4: अच्छा।
6: और हाँ,

0: अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोदकर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हर नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज

0: जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा,
4: हाँ
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
5: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
4: अच्छा,
5: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
4: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
5: बिल्कुल है।
4: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
5: उसका भी इंतजाम है।
4: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
5: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
4: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
5: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
4: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
5: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: आश्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपका रेडियो हमसफर अरविंद कुमार। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि जीवनदाता और पूजनीय माने गए हैं। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और आंवला जैसे वृक्षों को हमारे पूर्वजों ने देवतुल्य स्थान दिया। इसका कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि इनके जीवनदायी गुण भी हैं। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में हमें शुद्ध वायु, छाया, फल, औषधियां और वर्षा के संतुलन में अमूल योगदान देता है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं, तब एक एक पौधा धरती के भविष्य की आशा बन गया है। और दोस्तों, कहा भी गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं दोस्तों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम किसी पौधे को रोपते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, तब हम जीवन का विस्तार करते हैं। यही सच्चा पुण्य है। आइए हम संकल्प लें कि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, किसी प्रियजन की स्मृति या किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर और हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, सही मार्ग दिखाए और हमारे व्यक्तित्व का समृद्ध बनाए। यदि ऐसा कोई मित्र है तो वो है पुस्तक। दोस्तों, पुस्तक कभी शिकायत नहीं करती, कभी थकती नहीं है और न ही कभी हमारा साथ छोड़ती है। जब भी हम उन्हें खोलते हैं, वे ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का नया संसार हमारे सामने खोल देती है। महापुरुषों के विचार, वैज्ञानिकों की खोज, साहित्यकारों की कल्पनाएं और इतिहास के अनमोल अनुभव, सब कुछ पुस्तकों में सुरक्षित है। इसलिए कहा गया है, अच्छी पुस्तकें मनुष्य की सबसे विश्वसनीय

प्रिय मित्र होती हैं। आज डिजिटल युग में जानकारी तो बहुत है, लेकिन पुस्तकें हमें केवल सूचना नहीं बल्कि गहन चिंतन, धैर्य और सही दृष्टि भी प्रदान करती है। नियमित अध्ययन हमारी भाषा, अभिव्यक्ति और कल्पना शक्ति को विकसित करता है। यदि हम प्रतिदिन केवल आधा घंटा भी पुस्तक पढ़ने की आदत बना लें तो छोटी छोटी शुरुआत हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है। तो आइए हम अपने घर को एक छोटा सा पुस्तकालय बनाएं और बच्चों को पुस्तकें उपहार में दें। पुस्तक पढ़ने के लिए संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं। पुस्तकें केवल ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि जीवन की सच्ची पथ प्रदर्शक और हमारी सबसे अच्छी मित्र भी हैं।

0: आशु भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में बाजीगर फिल्म का गीत आपने सुना। जफर गोरखपुरी की रचना थी, अनु मलिक का संगीत निर्देशन था। दोस्तों कार्यक्रम यहीं जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।
1: या जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं गीतों भरी कहानी मन की जीत, प्रस्तुति अरुण कुमार शर्मा की है।
5: महेश गुप्ता जी और अशोक रस्तोगी जी जो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। महेश गुप्ता जी सरकारी दफ्तर में बाबू के पद पर काम करते थे और अशोक रस्तोगी जी आर्मी से रिटायर ऑफिसर थे। दोनों ही पड़ोस में काफ़ी समय से रहते थे। कॉलोनी में दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती थी। वैसे तो दोनों के परिवार में उनके रहन सहन में काफ़ी अंतर था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। गुप्ता जी और रस्तोगी जी दोनों का परिवार भरा पूरा था। रस्तोगी जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी और गुप्ता जी के पास 2 बेटी और 2 बेटे थे। दोनों ही अपना जीवन सुख से गुजार रहे थे। रस्तोगी जी के 2 बेटे आर्मी में ही अच्छे पद पर थे और छोटा बेटा इंजीनियर था। गुप्ता जी का 1 बेटा सरकारी शिक्षक था और छोटा बेटा और दोनों बेटियाँ अभी पढ़ाई कर रही थीं। गुप्ता जी अपनी बेटियों को ऊँचे पद पर पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने बेटों और बेटियों की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं किया। सुबह के समय गुप्ता जी और रस्तोगी जी पार्क में टहलने गए। दोनों रोज साथ जाया करते थे। थोड़ी देर टहलने के बाद दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। गुप्ता जी, हमारा जीवन तब सफल हो जाता है जब हमारे बच्चे सही मकाम पर सेट हो जाएं। और आज मैं खुश हूँ कि रिटायर होने के बाद मेरे बच्चों ने हम दोनों माँ बाप को संभाल लिया। हाँ रस्तोगी जी, ये बात सही है। औलाद जब बड़ी होकर किसी लायक बन जाए तो माँ बाप के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जीवन का हर सुख औलाद की खुशी के साथ होता है। सारा परिवार साथ रहे, यही जीवन का सुख है।

गुप्ता जी पार्क से लौटने के बाद दफ्तर के लिए तैयार हुए और नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचे ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर आकर खबर दी कि रस्तोगी जी की तबीयत खराब हो गई है, आपको तुरंत बुलाया है। गुप्ता जी फौरन ही भागते हुए उनके घर पहुंचे। वहां उनके पास केवल उनकी पत्नी थी। तीनों बेटे अपनी नौकरी की वजह से बाहर रहते थे अपने परिवार के साथ। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, उस समय उनके पास कोई नहीं था। गुप्ता जी ने तुरंत टैक्सी मंगवाई और रस्तोगी जी को जल्दी ही अस्पताल लेकर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। ये बात सुनकर गुप्ता जी को बहुत बड़ा झटका लगा। रस्तोगी जी की पत्नी ये सुनकर रोने लगी और परेशान हो गई, क्योंकि उनके पास उनके बेटे जो नहीं थे। गुप्ता जी ने कहा, भाभी जी संभालिए अपने आप को, आप परेशान ना हों, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। मिसेज रस्तोगी ने कुछ देर बाद अपने बेटों को कॉल किया और सब बता दिया। ये बात सुनकर आशीष और अखिल, जो आर्मी में थे, बहुत परेशान हुए। वो तुरंत आना चाहते थे, लेकिन दोनों को एक साथ इतनी जल्दी छुट्टी मिलना मुश्किल था। इसलिए आशीष ने कहा, माँ आप परेशान ना हों, हम जैसे ही छुट्टी मिलती है आपके पास पहुंच जाएंगे, बस आप डैडी का और अपना ख्याल रखना। बच्चों का इतना कह देना ही उनके लिए एक बहुत सुकून का एहसास था। बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम लोग जल्दी घर आ जाओ, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे कबीर को कॉल किया। फ़ोन उसकी पत्नी कविता ने उठाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों घर आ जाओ, तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही कविता ने कहा, ठीक है मैं कबीर को बता दूंगी। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया। मिसेज रस्तोगी को बहू का ये रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उनके फ़ोन करने के बाद यही होना था। उन्हें कविता से यही उम्मीद थी, क्योंकि कबीर की पत्नी कविता बहुत ही घमंडी और सिर्फ अपने से मतलब रखने वाली औरत थी। वो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए अलग हो गई और परिवार से उसके बेटे को भी दूर कर दिया। कबीर का 10 साल का एक बेटा था। वो अक्सर दादाजी के पास जाने की जिद करता था, लेकिन कविता उसे डांट कर मना कर देती थी। शाम को जब कबीर ऑफिस से घर वापस आया तो कविता ने उसे माँ के कॉल आने की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर कबीर काफी परेशान हुआ और जैसे ही वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कविता बोल पड़ी, वापस घर जाने की तो बिल्कुल मत सोचना, डैडी की तबीयत खराब है तो माँ है ना उनका ख्याल रखने के लिए, और भी तो बेटे हैं उनके, वो आ जाएं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, फोन से ही बात कर लेना, बोल देना ऑफिस से छुट्टी नहीं है, आ नहीं पाओगे। इतना कहकर कविता अपने रूम में चली गई। कबीर को दुख तो हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सकता था, क्योंकि कविता एक बहुत ही अमीर परिवार से थी और उसके पापा की वजह से ही कबीर को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी। इसलिए कबीर उनकी हर बात को आँख बंद करके मान लिया करता था। वो चुप होकर कमरे में आ गया और अपने काम में लग गया।

धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन बाद रस्तोगी जी को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुप्ता जी ने अपने दोस्त के लिए दिन रात एक कर दिए। उनकी देखभाल में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। मिसेज रस्तोगी कहने लगी, भाई साहब आपने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है। इस समय औलाद अपने माँ बाप को सहारा देती है, लेकिन आज आपने अपने दोस्त के लिए ये सब करके एक परिवार से भी ज़्यादा अपने होने का फर्ज निभाया है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। गुप्ता जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कहने लगे, भाभी जी मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, आप लोग मेरा ही अपना परिवार हैं। रस्तोगी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, फिर एहसान कैसा। सही कहा भाई साहब आपने, आज खून के रिश्ते भी पराए हो गए हैं। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन औलाद सब भूल जाती है। जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो अपने फर्ज से पीछे हट जाते हैं और माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं।

कुछ दिन बाद आशीष और अखिल को छुट्टी मिल गई तो दोनों अपने परिवार के साथ घर आ गए। दोनों बेटों को देखकर रस्तोगी जी बहुत खुश हुए। आशीष अपने डैडी के पास आकर बैठ गया और उन्हें तसल्ली देने लगा, डैडी अब हम आ गए हैं, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। रस्तोगी जी बेटों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी

उनकी आंखें किसी कमी को महसूस कर रही थीं। वो कमी थी कबीर की, क्योंकि वो अब तक उन्हें देखने, उनसे मिलने नहीं आया था। रस्तोगी जी की पत्नी उनकी इस फिक्र को समझ गई थी। वो जानती थी कि कबीर की वजह से ये परेशान हैं। तब वो उनसे कहने लगी कि मेरा मन कहता है कबीर ज़रूर आएगा, आप चिंता मत कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो ज़रूर आएगा। उधर एक दिन अचानक कविता की तबीयत खराब हो गई, उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सुबह की दवाई देकर कबीर ऑफिस चला गया, उसके पास उस वक्त कोई भी नहीं था। कविता उस समय अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। दोपहर को जब उसका बेटा आकाश स्कूल से वापस आया तो उसने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कविता ने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना है, जब पापा आ जाएंगे तब कुछ खा लेना। लेकिन आकाश भूख से परेशान था, इसलिए जिद करने लगा। उसने कविता की एक बात नहीं सुनी और जोर जोर से रोने लगा। कविता इस समय बहुत दुखी हुई। थोड़ी देर बाद जब कविता को प्यास लगी तो उसने आकाश को आवाज़ लगाई, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो मुझे। आकाश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और टीवी देखने में लगा रहा। कविता ने दोबारा कहा, आकाश बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी ले आओ। तब आकाश कहने लगा, मैं नहीं लाऊंगा, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपके लिए पानी क्यों लाऊं? आप अपने आप उठ के पी लो। जब हम दादाजी के घर थे तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। दादी माँ ने हमें बुलाया, आप नहीं गईं। जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर वो पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। कविता बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रह गई। वो आकाश की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित थी कि इतना छोटा बच्चा जब सारी बातों को समझ सकता है तो मैं सब बातों को क्यों नहीं समझ पाई। जब बच्चे अपने माँ बाप की परेशानी में उनकी मदद नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते तो उन्हें कितना दुख होता होगा। आज कविता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वो बहुत रोने लगी। शाम को जब कबीर घर आया तो कहने लगा, कैसी तबीयत है तुम्हारी, अब ठीक हो ना? कबीर के इतना कहते ही कविता उसके गले लग गई और खूब रोने लगी। कबीर ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कविता कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो कबीर, मैंने तुम्हें मम्मी डैडी के पास जाने से रोका, उनकी परेशानी में उनका हाल तक नहीं पूछा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया है आज कि बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उनसे दूर चले जाते हैं तो उन्हें कितना दुख होता होगा। हम कल ही घर वापस जाएंगे मम्मी डैडी के पास। कविता की बात सुनकर कबीर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन वो लोग घर पहुंचे, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। रस्तोगी जी अपने बच्चों को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, मेरा मन कहता था कि ये दोनों ज़रूर आएंगे और आज मेरे मन की जीत हो गई।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी के साथ युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6 बजने को आप समाचार होंगे।
1: साथ में विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे जलवायु परिवर्तन में फसलों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण और खेतों में वर्षा जल का संरक्षण। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय होगा मक्का बाजरा की खेती। गोपाल सिंह से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:45 पर श्रोता सुनेंगे फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत का संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज नव कथा, शीर्षक होगा 16 आने सच। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि 8:20 पर देश गान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09, 9:15 पर कार्यक्रम नवरंग। रात्रि 10 बजे सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम के अंतर्गत सुनील चौहान की गाई चंद गजलें। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन, राग होगा केदारनाथ। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिलाते हैं, आज रात्रि 9:15 पर श्रोता सुन सकेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। यह कार्यक्रम रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे के मध्य प्रसारित किया जाएगा।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को नानी बहन की राम राम। भैया वो देखो आगे कहो जाए ना, आपकी बार तो अधिक मास पड़ गो तो भी दिन आगे आगे थोड़े थोड़े चल रहे हैं, लेकिन समय और प्रकृति अपने हिसाब से चले हैं। जा समय हल्की आज बारिश भी भई है और आगे बारिश को समय भी आ रहा है, तो खेतन में हमारे जो खेत हैं वर्षा को जो जल है अगर हम बाग को संरक्षण करेंगे तो हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। भैया कहो जाए ना कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, तो खेतन में हमारे वर्षा के जल की जो अगर सुरक्षा अच्छी मिल जाए, बाकी निकासी की मिल जाए, अगर हम बाग जमा करना चाहें खेत के चारों ओर मेड़ बनाकर वर्षा को जल इकट्ठा भी कर सकें, और आगे अपनी खेती में अपनी फसल में बाग को लाभ ले सकेंगे। अब खाली भैया खेती बाड़ी में ना है, वर्षा को जल अगर हम अपने गांव में भी इकट्ठा करें, जैसे गांव के बाहर अगर हम वर्षा को जल इकट्ठा करें, गड्ढा कर लें, गड्ढा करके वहाँ में अगर हम खेतन वर्षा को जल इकट्ठा करेंगे तो वहाँ से भी हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बरसात को पानी भरना फसलन के लिए हानिकारक है सके कभी कभी, लेकिन अगर ज़्यादा पानी जमा करेंगे तो फसल गलने भी और सड़ने भी लगे। जाले खेत के किनारे नाली बनाकर अतिरिक्त जो पानी हो वह बाहर निकाल देना चाहिए, जल भराव की समस्या ना हुए। लेकिन घर खेतन के बाहर मजबूत मेड़ बनाकर पानी बाहर ना बहे इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खेत की ज़रूरत के अनुसार जितनी पानी की ज़रूरत है वो पानी हमें मिल जाए। नमी बनाए रखें, जल स्तर सुधार भी के काजे कुंडियाँ बना देना चाहिए, और वर्षा जल संरक्षण के अनेकों और तरीके हैं भैया, जैसे खेत के बाहर गड्ढा खोद दियो, वहाँ पर हमने बना दियो कि भैया हम वर्षा का पानी इकट्ठा कर रहे हैं खेत में आराम से, तो वो हमारे फसल के लिए लाभकारी रहे। बाकी साथ साथ भैया घर के काजे भी लाभकारी रहे। बोरवेल है, कुआं है, छोटी नाली है, छोटे छोटे

अगर हम हौद बना दें और वर्षा जल भर लें तो हमारे खाली खेती के काजे ना है भैया, पशुपालन में अभी बहुत लाभकारी हुए, पशु उनको पीवे काजे साफ शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि पानी को जल स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। अगर हम बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें, कहीं कहीं भैया गांव में आपने देखो भी होगा कि काव ने समर से भी लगवाया है तो बाकी थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा करवा के वर्षा को जल इकट्ठा कर ले में, तो कहा हुए बाको जो तुमने पंप लगवाया है बाको जल स्तर भी ज़्यादा नीचे ना जाए क्योंकि वो पानी वहाँ की वहाँ पहुँचावे, तो वैसे भी बहुत अधिक लाभ हुए। तो भैया जावाद को ध्यान रखें, खेत में खेत का पानी फिर खेत में और गांव का पानी गांव में इकट्ठा करें। तो ये रही भैया आज की चर्चा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी भी दिलवाएंगे मक्का बाजरा की खेती के बारे में। बातें पहले आनंद लें पंडित राम स्वरूप शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे पंडित राम स्वरूप शर्मा के सर में, जहाँ लोकगीत गाओ तेरी चितवन में चित भूले हो रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी दे पाएंगे गोपाल सिंह से, मक्का बाजरा की खेती, इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: आज की यह चौपाल में हमारे बीच है श्री गोपाल सिंह जी, जो गांव नगला सिरिया राया के रहवे बारे हैं। तो गोपाल सिंह जी, आपको यह कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम साहब
1: जी। तो खेती, जी जी जी,
2: किसान भाइयों को भी राम राम।
1: हाँ, तो आजकल खेती बाड़ी में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो आपने लगा रखी
2: है? इस समय जो है मक्का और बाजरा दो मुख्य फसलें हैं जो इस समय चल रही हैं। बाजरे की फसल तो ऐसा है कि एक ऐसी फसल है जो कि बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, बिना कुछ ज़्यादा लागत लगाए हुए भी की जा सकती है। विशेषकर हमारे यहाँ प्रचलन है कि आलू खुदने के बाद लोग जो हैं बाजरा बोते हैं हम लोग, और उस बाजरा में हमको कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती, और वो मार्च के लास्ट में अप्रैल के फर्स्ट वीक में बो देते हैं उसे, और उसके बाद वो दो तीन महीने में पक जाता है, तो बाजार में बड़ी अच्छी कीमत और बड़ी अच्छी पैदावार बिना किसी ज़्यादा लागत के और बिना किसी परेशानी के।
1: यानी आलू के खेत में जो उर्वरक डाल के जो बच जाए
2: जी,
1: वो उससे ही वाको जो है बाजरा की खेती है जाए।
2: तो मतलब जो उर्वरक बचता है उससे ही बाजरा की पैदावार बहुत अच्छी होती है, और उसमें यही है कि दो तीन पानी देने पड़ते हैं, सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है।
1: पानी तो अब ये देखो गर्मी में अगर हम फसल लेंगे तो पानी तो हमें चाहिए
2: उसमें, और दूसरी बात ये कोई बीमारी उनमें नहीं लगती, और बस ये है कि अगर लेट बोया जैसे मार्च के एंड से अप्रैल के 15 अप्रैल को बोएंगे तो उस समय फिर बरसा आ जाती है, इस समय तो वो खेत में खड़ा जब रहती है तो फसल कटने में दिक्कत आती है।
1: यानी कुल मिला के है कि जितना जल्दी जल्दी आपके आलू के खेत खाली हो जाए तो ये बाजरा की फसल डाल। ये अच्छा, या वो जैसे दाने के लिए ये बाजरा की फसल हमने करी है तो या को जो बच्चों में वो है वो चारे के काम आ जाए?
2: हाँ, अब जो कटी है वो चारे के भी काम आ जाती है। बहुत से हम लोग ऐसा भी करते हैं खेत में उसको जो है जुतवा भी देते हैं जिससे कि वो खाद के काम आ जाती है,
1: पूरी काम आ जाए
2: बिना किसी परेशानी के, मिलिट्री पड़ने वाले हल से या एजेक्ट वो जो दूसरा जो होता है उससे जो है जो तो देते हैं खेत में तो वो खाद का काम आती है। और इस समय जो फसल बोई जा रही है, इस समय की फसल भी जो है कुछ खेत तो अभी तक तैयार हो गए हैं, कुछ लोगों ने तो बुवाई कर दी है और कुछ बुवाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्षा इस समय बड़ी उसमें चल रही है, न्यूनतम उस पर है, बहुत कम वर्षा हो रही है, पर जिन लोगों ने बो दी है उनकी फसल उगाई है और वो अपना असली अच्छी तरह से फसल की तरफ देख रहे हैं।
1: और मक्का की खेती में?
2: मक्का की खेती तो और भी उत्तम है। मक्का की खेती में जैसे ही आप जो है 15 मई से लेके और 1 जून तक लोगों ने बुवाई कर दी, तो मक्का की बुवाई करने के बाद उसमें जो अपना कंपोस्ट वगैरह की खाद डाल दें और भी कुछ रासायनिक खाद भी जिस हिसाब के साथ, जैसी मृदा परीक्षण भूमि का जो मिट्टी की जो परीक्षण है वो बहुत जरूरी है, उसे तो आप देख रहे हैं
1: कि
2: हाँ ये बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री महोदय भी इस समय सबसे ज्यादा जोर जो है मृदा परीक्षण दे रहे हैं, और उनका उद्देश्य भी सही है कि अगर हम हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण उनको बना के दे देंगे तो ये जो रोज रोज का झंझट है किसानों का कि आज इस खेत में कितना खाद डालना है, इस फसल के लिए कौन सा खाद डालना है, वो बन जाने से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: हाँ, नहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो ये चाह रहे हैं कि हर खेत की पहचान जैसे हमारा एक आधार कार्ड है,
2: हाँ,
1: ऐसे ही हर खेत को एक जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है
2: हाँ,
1: होना
2: ये
1: चाहिए।
2: बहुत वो भी तो मन की बात में वही सब बातें वो बता रहे हैं, वो हम लोगों के लिए भाई लाभकारी है, पर हम कुछ लोग जो अक्सर जिनके पास रेडियो नहीं है जो उपेक्षित रहते हैं वो उनकी बातें नहीं सुन पाते।

0: बातें, मैंने कि इस समय टीवी के अलावा रेडियो बहुत आवश्यक हो गया है और हम किसान भाइयों को तो उससे बहुत बड़ी, क्योंकि आपके यहाँ से भी बराबर प्रसारण होते रहते हैं खेती के संबंध में
1: जी, जी।
0: और प्रधानमंत्री महोदय तो अक्सर जो है बोलते
1: हैं। मक्का की खेती लाभदायक हो, अच्छी हो, पैदावार अच्छी मिले हमें, क्योंकि हर किसान भाई का यही उद्देश्य है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और हमारी आमदनी हो, तो या के लिए जो ध्यान देने वाली बातें हैं
0: मक्का के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो भूमि हो वो उत्तम और जल निकास की होनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि वर्षा के दिनों में बाढ़ पानी आ जाए,
1: पानी
0: भर जाए तो मक्का जो बेकार हो जाएगी। इसलिए पानी का
1: मतलब थोड़े ऊंचे वाले खेत में हो,
0: बलुई जमीन हो और ऊंचे वाले में हो तो बहुत अच्छी रहती है।
1: और
0: मक्का के अंदर दूसरी बात यह है, बहुत सी प्रजातियां हैं, पर हम लोग तो अक्सर जो है संकुल प्रजाति या देसी ही मक्का ज्यादा होते हैं
1: जो अपने यहाँ मथुरा
0: आस पास रहती है। और इसमें देखो एक प्रगति नाम की है किस्म, वो बहुत अच्छी है और उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है और वो जो है 3 महीने में पक के तैयार हो जाती
1: है। तो ये मक्का जो जैसे बाजार में आते हैं आजकल हम देख रहे हैं मक्का आ रही है भुटिया खा रहे हैं, तो ये यही आसपास की या बाहर से आ
0: रही है? नहीं, ये सब मक्का जो है जो अक्सर जो है ये वो किसान बोते हैं जिनके खेत जो मैंने बताया ना पहले बाजरा वाले, वो बाजरे वाले न करके वो लोग जो शहर के नजदीक है या जिनके पास अपना सिंचाई का साधन अच्छा है, क्योंकि इसके लिए पानी बहुत आवश्यकता होती है, तो जिनके पास खेत खाली हो गए आलू या लाया के तो उन खेतों में वो अपना मक्का बो देते हैं। और जिनके पास अपना श्रम है भाई, इसके लिए श्रम की भी तो आवश्यकता होती है,
1: निराई गुड़ाई की,
0: मक्का में निराई गुड़ाई की आवश्यकता बहुत होती है। तो
1: अच्छा, इसमें वो भी नुकसान बहुत करते हैं जो वो है तोता वगैरह, ये बहुत ज्यादा
0: हाँ, ये तोता तो नुकसान करते ही करते, पर सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो आजकल जो नील गाय है ये सबसे खतरनाक साबित हो रही है।
1: तो इनकी रोकथाम कैसे करते
0: हैं? इनकी रोकथाम के लिए जो लोग अपना या तो 24 घंटे उन पर अपने वो रखते हैं, आदमी रखते हैं, निगरानी रखते हैं, परंतु ये बहुत ही सबसे ज्यादा अगर हमारे इलाके में अगर नुकसान पहुंचाने में सब्जी में भी मक्का में भी बाजरा में भी ये नील गाय बहुत घातक सिद्ध हो रही
1: है। तो पहले तो किसान भाई बिजुका लगा देते थे खेत में, आजकल
0: अब
1: कामयाब नहीं है क्या?
0: अब बिजुका को तो ये कुश्ती लड़ती है आगे नील गाय,
1: अच्छा
0: उससे टक्कर आती है, वो बिल्कुल नहीं डरती। अब तो बहुत से किसानों ने यहाँ तक भी वो थोड़ा धमाका वगैरह चलाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता उन पर, उतनी
1: सहनशील
0: हो गई
1: है, समझ गई है,
0: कम से कम एक दो नहीं है 10-10, 20-20 के मतलब उनके ग्रुप चलते हैं।
1: तो इसमें क्या प्रशासन के स्तर पर भी कोई बातचीत की है क्या?
0: प्रशासन किसान भाइयों ने प्रशासन स्तर से बहुत किया, हम जितनी जिले पर जो मीटिंग होती है हम लोगों की किसान भाइयों की, वहाँ भी हम अधिकारियों के सामने यही समस्या रखते हैं, परंतु न जाने क्यों यानी राजकीय अधिकारी या हमारे जो नेता हैं,
1: कई बार क्या वन संरक्षण और जीव संरक्षण अधिनियम भी आ जाता है कि उसको मार,
0: तो इसका तो एक बढ़िया उपाय है साहब कि जीव संरक्षण को हम कभी कहते हैं कि नहीं मारा जाए, जहाँ इन पे बहुत से वन क्षेत्र हैं जहाँ इनके और भी जीव जंतु तो रह रहे हैं, इन्हें पकड़वा के वहाँ ले जाएं,
1: हाँ ये किया जा सकता है,
0: तो इससे हम लोगों की जान बच जाएगी। भाई जितना ये नुकसान करती है ये हम लोगों से कुछ इसमें सहायता ले लें, हम तो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट चाहे तो हम फी एकड़ कुछ पैसा देने तक रुपया देने तक तैयार है, अगर सरकारी अधिकारी या वन रक्षण वाले इनको पकड़ के ले जाएं और अपने जहाँ इनके वन रक्षण क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी
1: बड़ी मदद होगी,
0: बहुत बड़ी मदद होगी और किसान बच जाएंगे।
1: एक चीज और गंगा सिंह जी है कि आजकल किसान भाई बहुत ज्यादा उर्वरक के पीछे पड़े रहते
0: हैं,
1: तो इसमें इसका कुछ विकल्प आपने सोचा हो अपने स्तर पे, जैसे पुराने तरीके थे कार्बनिक खेती के?
0: ऐसा है जी, ये आजकल बहुत अच्छी जो लोग जागरूक हैं वो तो आजकल जो है इस उर्वरक वाली समस्या से आजीज आ गए हैं, क्योंकि इससे मिट्टी खराब हो रही है और उसके अलावा पैदावार भी दिन प्रतिदिन
1: कम
0: होती जा रही है। आज जो आदमी पहले देते थे यूरिया का 1 कट्टा अब वो 2 देने लगे और फिर उसके बाद 3 देने लगे, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, जमीन बेकार हो रही है, पैदावार बढ़ नहीं रही। इसके लिए सबसे उत्तम चीज है कि हम लोग एक तो केंचुआ की खाद, हम लोगों के पास खाद तो होता है ये जानवर रखते हैं, तो केंचुआ की खाद जो है बनाई जाए तो ये बहुत लाभप्रद है। और दूसरा जो है उसमें कंपोस्ट वाली बात जो है, ये जैविक उर्वरक जो हम तैयार करें उससे हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु हम किसान भाई भी कुछ उतने वो हो गए उदासीन,
1: उदासीन गए या श्रम करना नहीं चाहते।
0: आज का जो नौजवान है वो खेती की तरफ काम नहीं करना चाहता, वो तो इस चक्कर इस फिराक में रहता है कि बिना
1: पैसे लगा के चीज डाल दे और हम पैदावार,
0: ट्रैक्टर को जुतवा दे खेत में और ट्रैक्टर फिर ट्यूबवेल का पानी चला दे और आराम से कटाई जाए, बस खाद डाल दे, आराम से, कोई जरूरत नहीं है उसको कि थोड़ा मेहनत

0: करें। नहीं तो मैंने खुद किया है, केंचुआ वाली, केंचुआ का खाद जो है बड़े आराम से बनाया जा सकता है, उसमें से उसकी जो है उर्वरकता, जमीन की जो उर्वरकता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है, और जो भी फसल आप उससे लेंगे तो वो फसल भी खाने में लाभप्रद रहेगी।
1: और तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और किसान भैया, आप थे गोपाल सिंह जी जो नगला सिरिया के रहने वाले राय के पास में, और जानकारी दे रहे मक्का और बाजरा की खेती के बारे में, और जो उनकी जो उपयोगी बात थी और जो समर्थन था विशेषकर कार्बनिक खेती के बारे में, केंचुआ की खेती के, केंचुआ खाद के बारे में, तो इसको अगर हम अपनाएं तो निश्चित तौर पर हमें काफ़ी लाभ भी होगा और हमारे जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी रहेगी। तो गोपाल सिंह जी, आप आए, जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम
2: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे हैं गोपाल सिंह से, मक्का बाजरा की खेती, इनसे बातचीत कर रहे ओपी सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको आनंद दिखा रहे हैं ऋषि शर्मा के सर में जालो गीत को।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

गीता दत्त के स्वर में अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म से ये भक्ति रचना। आइए सुनते हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के सुरों में काला बाजार फिल्म से ये भक्ति रचना।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा को आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म के लिए। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म है गोपी।

मोहम्मद रफ़ी के सर में अभी आप सुन रहे थे गोपी फिल्म से ये भजन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और यशुदास के स्वरों में। फिल्म का नाम है अलग अलग।

आशु भोसले और यशुदास के सुरों में अभी आप सुन रहे थे अलग अलग फिल्म से ये भजन, और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन

0: केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ब्रज नवकथा सोलहू आने सच। कथाकार हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि।
5: बहुत दिनन के बाद आज अपने गांव को आयो तो बचपन के सारे संगी साथिन ते मिलवे को मन करो। थारी में परोसो भोजन जिम के मैया ते पूछ के मैं गांव में घूमबे को निकर परो। सबते पहले नरेंद्र के ढिंकू चलो। बचपन ते ही संग पढ़वे लिखवे के कारण नरेंद्र को लगाव कछु ज्यादा ही है। दूसरे नरेंद्र की आदत है कि वो पूरे गांव भरे की ही नाय अपने आसपास के गामन तक की खबर रखो करे है। कौन के घर कब कौन सो काम है, बे बारो है, कब कौन को ब्याह है, कौन को संबंध कहाँ ते तय भयो है, कौन सुख चैन की बंसी बजाय रहो है और कौन दुख भरे दिन काट रहो है। जिस सारी खबरें नरेंद्र के ढिंग पहुंचते ही मालूम पर जामे हैं। याही ते सबते पहले मैं नरेंद्र के ही ढिंग जाय पहुंचो। रामा कृष्णा के बाद नरेंद्र ने मोकू मूड़ा पे बैठायो और फिर बोलो, और सुनाओ कहा नई खबर है भैया। नरेंद्र की बात सुनके मैं धीरे ते मुस्काए दयो। अरे नरेंद्र, मैं तो ठहरो बाहर रहे बेवारो, बहुत बहुत दिनान में गांव आनो हो बे है, पर तू तो याही ठोर गांव में रहो करे है, तू बता कहा नई बात है। बस मेरो इत्तो पूछबो हो कि नरेंद्र ने बातन की गठरी खोल डारी। एक एक करके सारे संगी साथन के, रिश्तेदारन के, जान पहचान और गांव घर सबन के बारे में नरेंद्र हुमस हुमस के बताबे लगो कि याबेर गांव में प्रधानी के चुनावन में ऐसो पासो पलटो के सारे तीस मारते खान को पछार के प्रसादी लाल प्रधान बन गयो। और बनतोहू चोना बाने पूरे गांव भरे के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हते। प्रधानी को चुनाव तो अब भयो है, पर प्रसादी लाल तो केव बरसंते गांव भरे की सेवा कर रहो हो। जा काहू को काम परो, चलो प्रसादी लाल पे। और प्रसादी लाल ऐसो के ना काहू ते को स्वार्थ ना इच्छा, बस जाको काम परो, अपनी पूरी ताकत झोंके बाको काम पूरो कराए देवे हो। फिर चोना प्रधान बनतो ऐसो आदमी, तुम ही बताओ भैया। नरेंद्र इत्तो बोल के मेरे मोहड़े के लंकू देखवे लगो। तू ठीक कह रहो है नरेंद्र, भलमन साहत की हर को कदर करे है, और फिर चंट चालाकन की एकाद बार तो चल जावे है, काठ की हाड़ी बेर बेर ना चढ़ो करे है। प्रसादी लाल ने गांव मोहल्ला बारेन को कछु करके दिखाया हो तो बिन को खूब फर्ज बने है कि वो ऐसे ही आदमी को चुने। जे तो है, पर आजकल चुनावन में निष्पक्षता रह ही कहां गई है। आजकल तो धन बल और छल के जोड़ते सही को गलत और गलत को सही कराए लेबे हैं। निकम्मे कामचोर और गुंडा अपनी गुंडागिरी ते जनता को धमकाए के अपने पक्ष में वोट डलवाबे की पूरी कोशिश करे हैं। केउ बरस पहले गांव में भय प्रधानी के चुनावन को बाकया याद आवत ही मेरे मुंह में नीम के पत्तन को अर्क निचुड़ गयो। नरेंद्र हु समझ गयो के मोकू कौन सो बाकया याद आ गयो है। सो नरेंद्र बोलो, हाँ तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर अब की बेर जो भयो है ऐसो आज तलक कबू ना भयो। दूध को दूध और पानी को पानी करके धर दयो गांव बारिन ने। चल भलो भयो, तेने एक भली बात सुनाई गांव की, और सुना गांव के पुराने संगी साथियों के का हाल चाल है। ओमवीर धर्मवीर राजेंद्र सबके बालकन के का हाल चाल है। सिगरे संगी साथी मौज में है। ओमवीर अपने मैया बापूते जमीन जायदाद को बंटवारो करके कॉलोनी में रहवे लगो है। राजेंद्र ने अपने एक एक छोरा छोरी को ब्याह कर दीनो है। धर्मवीर ने हूँ अपनी छोरी को ब्याह तय कर दीनो है। अरे सब उनके छोरा छोरी इतने बड़े है गए, समय कैसो फुर फुर करके उड़ो जावे पतो ही ना चले। मैंने नरेंद्र की लंकू अचरस्ते

हाँ भैया, समय काहू के रोके थोड़ा ही रुके, वो तो एक पल हु को विश्राम ना करे, बस पल पल करके चलो ही चले। और देखत ही देखत राजा कु रंक और रंक कु राजा बराबत भय दौड़ो करे है। अब्बा को ही देख लो तिहारो सहपाटी सुरेंदर, कैसो उलीचो करे हो धन कु, आज बाके द्वे बखत की रोटिन के हु लाले पड़े भय है। सुरेंद्र के बारे में नरेंद्र की बात सुनके मोए धक्का सो लगो, बचपन के संगी साथन में सुरेंद्र सबसे ज्यादा रही सी ठाट बाटते रहो करे हो। चौधरी देवी सिंह को देव तो सुरेंद्र, मेरे बचपन को लंगोटिया यार हो। चौधरी देवी सिंह गांव की जानी मानी हस्ती है, लंबो चौड़ो सो आहातो, छह छह तगड़े बैलन की जोड़ी, गाय भैंस और खेती बारी, घर में और खेती में काम करवे बारे नौकर चाकरन की को गिनती ही ना ही। सुरेंद्र मेरे संगई पड़ो करे हो, खूब खुल के खर्च करे हो। मैं अपने घर की गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही उम्र ते ज्यादा सयान हो गए हो, याही ते सहपाटी के नाते मैं सुरेंद्र को कबू कबू समझाओ करे हो कि भैया रुपया पैसा को उलीचबो की जगह ठीक ते खर्च करबो सीखो। नाना की अकूत दौलत हाथ लग गई है तो जाको जे मतलब ना है कि बाकू खूब खर्चो, जहां जरूरत हो हुआऊं और जरूरत ना हो हुआऊं, या तरिया तो लक्ष्मी जी रूठ जाबेंगी। ठीक ते खर्चनाए करवे बारे बहुतेरे कंगला होत भय देखे हैं, पर सुरेंद्र डूबो भय हो धन के मद में, घर में अकूत धन होए और मानस को मद ना होए जे कैसे है सके, मत तो काहू बिरले को ही ना है सके, जा पे प्रभु की कृपा होए। बहुत समय ते सुरेंद्र के बारे में को खबर ना मिली ही, सो मैंने नरेंद्र ते सुरेंद्र के बारे में पूछी। नरेंद्र ने मुकू ऊपर ते नीचे तलक निहारो, फिर एक लंबी सांस लेत भय बोलो, कहा बताऊं सुरेंद्र की हालत देख देख के मोकू लड़कपन को सुरेंद्र बाके ठाठवाड़ और रुपया पैसा को उलीचवो याद आए जावे है, और बाही के संग याद आए जावे है त्योहारी बातें जिनको तुम सुरेंद्र ते कहो करे के सुरेंद्र रुपया पैसा को ठीक ते खर्च न करवे बारे बहुतेरे कंगला हो तो भाई देखे है, याते धन को दुरुपयोग मत करो भैया। नरेंद्र इतो कह के चुप है गया, बाकी बातन में इत्तो तो अंदाज लग ही रहे हो कि सुरेंद्र को समय बदल गयो है, धन के दुरुपयोग ने वाकी माली हालत को गड़बड़ा दियो है। फिर हु मैंने नरेंद्र को कुरे दो, सुरेंद्र के बालकन को शादी ब्याह तो है गयो होगो सबको, हाँ द्वे छोरान को ब्याह है गयो है, एक छोरी को ब्याह अब तय करो हो, पर रिश्तो टूट गयो। रिश्तो टूट गयो चो, सुन के मुए अचंबो सो भयो, पहले जब रिश्ता तय करो हो तो बिनको छोरा बेरोजगार हो, याही ते छोरा के मैया बापू ने सोची होएगी कि चलो छोरी बारेन पे इत्तो ज्यादा ना है देवे कु तो को बात ना, छोरा की भामर तो डर जावेगी। पर कछु दिना बाद ही छोरा की नौकरी लग गई तो बिन ने सोची होएगी कि अब तो छोरा को अच्छो ते अच्छो ब्याह है जावेगा, बस फिर काओ। छोरा बारेन ने सीधे तरिया तो ब्याह करवे ते मना ना करी, बोले के छोरा जिद कर रहो है कि वो अपनो ब्याह 3 साल बाद करेगा। अब तुम्हें बताओ भैया, 3 बरस तक इंतजार के बाद वो पूरी तरिया मना कर दे तो छोरी की उम्र 3 बरस और बढ़ जाएगी, तब सुरेंद्र इते को रहेगो न उते को, याही ते सुरेंद्र ही खुद जाके छोरा बारे इनको मना करे आयो। सारी बात बताए के नरेंद्र ने मेरे मोहड़े की लंकू देखो, हाँ जितो तू ठीक कह रहे हो है नरेंद्र, पर एक बात बता भैया, का सुरेंद्र की इतनी सारी धन दौलत सब खत्म है गई जो हियां तक नौबत आ गई? मेरी जिज्ञासा जान के नरेंद्र ने हामी भरी, तुम ठीक कह रहे हो भैया, लक्ष्मी चंचला होए है जे काहू एक जगह ना ठहरो करे। सुरेंद्र ने धन के मद में कबू परवाह ही ना करी और हाथनते धन को उलीचबो करो, याही ते जे हालत है गई, अब एक जगह ते रिश्ता टूट गयो तो मारो मारो फिर रहे है। पर छोरा बारे के दिमाग साथ में आसमान पे चढ़े भय थे, छोरा बारे छोरी बारे के पैसा टकानते ही रातों रात लखपति बन जानो चाहे, नगद रुपया पैसा हु दे और सिगरो सामान हु, जहां कहूं हूं सुरेंद्र रिश्ता की बात करे है लेबे देबे की बात आवते ही सब कन्नी काट जावे है, अब कहां ते लावे सुरेंद्र, अब बाके पास इतो धन दौलत ना ही बचो के वो खूब ही ठाट बाटते छोरी इनको ब्याह कर सके। नरेंद्र जे दहेज को कोड़ कबू खत्म होएगो के ना है? खत्म कहां ते होएगो तुम्हें ही बताओ भैया, जापे देबे को हतो है
वो सारी

0: दुनिया को दिखावे के लिए जाने कहा कर डालो चाहे, गाजे बाजे कार मोटर सभी में खूबी पैसा उलीचो करे है। बाकी देखा देखी और उनको हौसलो बढ़ है और बु मोहनो फार के छोरी बारे उनकी धन दौलत एक ही दिना में लखपति बन जानो चाहे। अब भले ही काऊ पे दे बेकू हो या कर्ज करके दे, सरकार हो दहेज रोकेबे के झूठे सच्चे तरीके अपनाओ करे है। को ठोस कदम तो उठावे ना जो काहू की हिम्मत ही ना पड़े दहेज लेवे देवे की। तू ठीक कह रहो है नरेंद्र, पर खाली सरकार को दोष देवे ठीक ना है भैया। सरकार को घर घर जाके थोड़ा ही झांक वो करेगी, दहेज को कोड तो तभी खत्म होएगो जब हम अपनी अपनी दोहरी सोच को बदलेंगे। छोरी को ब्याह करबे के लिए तो हम दीनहीन बन जावे हैं और अपने छोरा को ब्याह तय करत भय बढ़ चढ़ के निराल भी करो है छोरा की, तब सब भूल जामे हैं कि छोरी बारे इतो धन दौलत कहां ते लाएगो लुटाए बेगू। तिहारी बात सोलहू आना सच है भैया।
1: सोलहू आने सच, अभी आप सुन रहे थे ये ब्रज नव कथा। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला बने। ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो, ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी

0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
2: यूपी का APY स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया।

जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या। सांझ की सुनहरी बेला में कार्यक्रम शाम सुहानी में आपका स्वागत है। श्रोताओं, ये है आपका अपना फरमाइशी कार्यक्रम शाम सुहानी, जहां आपके व्हाट्सएप संदेश और उनकी महक, साथ ही आपकी पसंद के सदाबहार फिल्मी गीत, ये सब मिलकर यादों का खूबसूरत कारवां सजाते हैं। शाम की चादर पर सुरों के सितारे खिलें, हर धड़कन को छूते हुए गीत प्यार में के मिले, संदेश आपका, मुस्कान हमारी, यही है अपनी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं अपनत्व और संगीत से सजी शाम सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गीत शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत निर्देशन था। इस गीत को सुनने के लिए जो संदेश में प्राप्त हुए हैं उनमें श्रोताओं के नाम हैं, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद, तरुण श्रेणिका और अश्विनी जाका, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साहिबा मिखाइल और जैनब मुजावर, इनके साथ हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार। पंढरपुर के श्रोता हैं जाकिर मुलाड़ी, सुमैया सुबान, सलमान समीर, मुमताज दिलशाद, नसीर बानूबी और बादशाह मुलाड़ी। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, पप्पू और टप्पू। नेहरू चौक पैंठण से डॉटक सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल्स और सिया जाधव।

अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रणाली हागोड़े, पार्थ और इनके परिवारजन। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता प्रतीक हिवराले। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। बाविनीम गांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती और ओम कुमार सुरलकर का संदेश में मिला है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, जुनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र उमेश और प्रमिला वंछूर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। कंगवासरा से सचिन, सतीश, योगेश और युद्ध, ये हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं। विक्रम कंगवासरा इनके साथ। यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा और श्रव्या राम टेके। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृत पुरुष महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से नसीम मोहम्मद, सलमा, रेहान और फैजान। राजनगर कांति निकेतन से रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश, रश्मि नीलम और कुसुम रूपा इलाहाबादी। मलकापुर के श्रोता हैं संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान। पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके ढेर सारे साथीगण। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद फजान, मोहम्मद फरहान, समायरा अजीम और इनके परिवारजन। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मगलिक और आकांक्षा मलिक। श्रोताओं से निवेदन है कि अपना लोकल एड्रेस की बजाय अपना किसी शहर का नाम लिखें, साथ ही अगर किसी स्टेट से हैं उसका भी नाम आप ले सकते हैं। मोहल्ले का नाम या लोकल जो स्थान है उसका नाम ना लिखें। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की तानिया नारंग और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया। श्रोतो, संगीत का जादू तभी और बढ़ जाता है जब उसमें लोक जीवन की सादगी, प्रेम की चंचलता और मधुर धुनों का सुंदर संगम हो। पेश है ऐसा ही एक सदाबहार गीत जिसने अपने मनमोहक बोल और कर्णप्रिय संगीत से दर्शकों से श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया हुआ है। इस गीत को शब्दों में पिरोया है वर्मा मलिक ने और इसे मधुर धुनों से संवारा है संगीतकार जुड़ी सोनिक ओमी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: चटके फटेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: मोहम्मद रफी की आवाज में सावन भादव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक के बोल थे, सोनिक ओमेगा संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें जो संदेश प्राप्त हुए हैं उनमें नाम है यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना तय लोखंडे, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षता, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से जुड़े हैं दातार सिंह शेखावत, कंवर संगीता कंवर, तुसार सिंह, रिंकी शेखावत, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजेल सोनू और पप्पी भाटिया, कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री और शिवानी, अभय कुमार, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, तुसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्ने देवी, जयप्रकाश, वसंत लाव, हीरा मोती और इनके ढेर सारे साथीगण। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश सेन, सुरेखा और शुभम अक्षय। कमरिया छत्तीसगढ़ से

खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना, अर्जान अबान और इनके परिवारीजन। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। तेलंगाना से कानगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवलिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश। इन्होंने रंगारेड्डी तेलंगाना से संदेश भेजा था।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल शिवा, सनीता पुष्पा और अंजू, योगिता, रज्जन हेमंत और धर्मदास वाधवानी। पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज और पी आर जैन। संतानगर काष्ठी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानुषी शिंदे, निशांत और इनके साथीगण। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक और मुरली छत्री। तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाश दी बनहा, गुरशब्द। वर्निंग खेंडा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामणि शिंदे। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा, ईशान और पूजा परिहार। समाना शहर पंजाब से पप्पू, संगीता, महक, सुनीता, आरजू, हंसमुखलाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रतीक कुमार नायक, राज बहादुर, शंभु, रजनी, सागर और जय। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोकड़े, नंदा बोकड़े, हनुमान बोकड़े, वकोड़ी उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतराव भोजने, पीहा सुनवानकर। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश में मिला है। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी कुमार, प्रतीक कुमार। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। और रिमझिम डेम्पियन नगर से रजनी सैनी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ही हीर राजा फिल्म का यह गीत है, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल

सचमुच बहुत ही मधुर अनुभूति है इस गीत की। गीतकार कैफी आजमी के भावपूर्ण शब्द, मदन मोहन का अनुपम संगीत और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ों ने इस गीत को कालजयी बना दिया। पर्दे पर राजकुमार और प्रिया राजवंश की गरिमामयी और भावपूर्ण अदायगी इस गीत की आत्मा को और भी सजीव बना देती है। श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों के साथ अब आज के फरमाइशी कार्यक्रम शाम सुहानी से विदा लेने का समय आ गया है। आपके स्नेहिल व्हाट्सएप संदेशों और अमूल्य साथ के लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम को फिलहाल समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम सुनते रहेंगे, जारी रहेंगे और आज आप सुनेंगे नवरंग, और नवरंग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म के लिए। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, शमशाद बेगम की आवाज में बाजी फिल्म का गीत है जिसे लिखा है साहिर ने, संगीत तैयार किया है ST बर्मन ने।

0: घबराए काहे, शर्माए काहे।
1: शमशाद बेगम की आवाज में बाजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे साहिर, संगीतकार एसटी बर्मन। फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में लाल पत्थर फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले की आवाज में लाल पत्थर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी की कलम से निकले हुए इन शब्दों को सुरबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी रेडियो सेट के माध्यम से। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें हैं हमराज फिल्म के लिए। गीतकार हैं साहिर, संगीत रवि का है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम देशगान, आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में कुछ देशभक्ति।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में प्रेम धवन की ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल ही तो है फिल्म के कुछ गाने। श्रोतो, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्ष 1963 की एक ऐसी संगीतमय फिल्म जिसके गीत आज भी संगीत प्रेमियों के हृदय में उसी आत्मीयता से बसे हुए हैं। वो फिल्म है दिल ही तो है। निर्देशक C.L. रावल की इस फिल्म में राज कपूर, नूतन प्राण और नजीर हुसैन ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। गीतकार साहिर लुधियानवी के भावपूर्ण बोल और संगीतकार रोशन के शास्त्रीयता से सराबोर संगीत ने इस फिल्म को अमर बना दिया। श्रोताओ, ये कहानी है प्रेम, पहचान और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव की। एक युवक और

युवती संयोग वर्ष एक दूसरे के निकट आते हैं, प्रेम अंकुरित होता है, लेकिन सामाजिक हैसियत, गलत फहमियाँ और परिस्थितियाँ उनके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी कर देती हैं। संघर्षों के बीच भी उनका प्रेम अडिग रहता है और अंततः सत्य और प्रेम की विजय होती है। इसी भावपूर्ण के साथ ये कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है मन्ना डे ने। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीत रोशन का है।

राग भैरवी की मिठास से सजा ये कालजय गीत केवल संगीत की इस दृष्टि से ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनरी यहाँ जीवन की पवित्रता का प्रतीक बन जाती है, जिसे संसार की माया मोह और परिस्थितियों के दाग छू लेते हैं। मन्ना डे की विलक्षण गायकी ने इस रचना को अमर बना दिया। उधर फिल्म की कहानी भी आगे बढ़ती है। नायक और नायिका का प्रेम अब गहराने लगता है। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, लेकिन अपने मन की बात खुलकर कहने का अवसर अभी नहीं मिला है। मिलन की आकांक्षा और मन की चंचलता अब उनके भावों में झलकने लगी है। उनकी मनोभावों को व्यक्त करता हुआ कार्यक्रम का एक अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने, सहिर लुधियानवी की रचना रोशन का संकेत।

आशु भोसले और सखियों की आवाजों में दिल ही तो है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, पहली मोहब्बत की मासूम चाह, आंखों की भाषा और दिल की धड़कनों को साहिर लुधियानवी ने अत्यंत सहज शब्द दिए हैं। रोशन का मधुर संगीत और आशा भोसले की मधुर आवाज इस गीत को विशेष आकर्षण प्रदान करती है। अब कहानी एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंचती है श्रोताओं, परिस्थितियां दोनों प्रेमियों के बीच दूरियां पैदा कर देती हैं। सामाजिक भेद, पारिवारिक उलझने और कुछ गलत फहमियां उनके संबंधों की परीक्षा लेने लगती है। लेकिन सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, विश्वास और समर्पण का नाम है। इसी भाव को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त करता फिल्म का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है मुकेश की, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत निर्देशन।

0: मुकेश की दर्द भरी आवाज में सजा ये गीत निस्वार्थ प्रेम की अनूठी मिसाल है। प्रेम में शिकायत कम, प्रिय के सुख की कामना अधिक होती है। सही लुधियानवी के शब्द रोशन का भावपूर्ण संगीत इस गीत को सदाबहार बना देते हैं। फिल्म के अंतिम चरण में सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, श्रोताओं सच्चाई सामने आती है, रिश्तों की गांठें खुलती हैं और प्रेम अपनी मंजिल पा लेता है और हमारी भी मंजिल अपूर्ण होती है। इस प्रोग्राम को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

0: पाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक

0: राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में

0: अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शब्दों से जुड़ते हैं मन, भावों से बनते हैं रिश्ते। पत्रों की स्याही हो या मोबाइल का संदेश, हर पंक्ति में बसता है अपनापन, हर शब्द में झलकता है स्नेह। इन्हीं आत्मीय भावों को लेकर हम उपस्थित हैं आपके बीच। आपके पत्र, आपके व्हाट्सएप संदेश, आपकी फरमाइशें और आपके स्नेहिल अभिवादन।

0: यही है इस कार्यक्रम की असली पहचान। यदि आप भी अपने मन की बात, सुझाव, प्रतिक्रिया या अपनी पसंद के फिल्म गीत हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है कार्यक्रम नवरंग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, मथुरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 281003, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर अपना संदेश भेज सकते हैं। तो आइए आपके संदेश और आपकी पसंद के मधुर गीतों से सजे इस रंगारंग सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आज की पहली फरमाइश।
1: झूठ।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में बॉबी फिल्म का गीत विट्ठल भाई पटेल की रचना थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। मोतारा महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजाम, साहिबा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत सादिया इनके साथ, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, वरवट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे, दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, परस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान और इरफान खान, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली और पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और अल कबीर। सहारनपुर से जुड़े हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, उमेश और प्रमिला बंछोर। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। हमारे अगले श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल। इसी संदेश में नाम शामिल हैं रामगढ़ कैंट झारखंड के श्रोताओं के निप्पी साहनी और सुनीता साहनी के। मुंबई के श्रोता हैं अहमद फूलवाले, दुखला सदफ, जोही इकबाल, इमरान और दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा, रबिया और आशु अहमद। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। इनके साथ हैं मुन्ना स्वर्णकार, प्रिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और इनके परिवारजन। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत और धर्मदास वाधवानी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। फाजिल का पंजाब से जुड़े हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शुभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इनके साथ सहदेव दामोदर, शशिकला और सुवेद कुमार। दत्रेगी के श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा। और सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। श्रोताओं, प्रेम की पहली आहट जब आंखों की भाषा में उतरती है तो शब्द पीछे रह जाते हैं और भाव स्वयं बोल उठते हैं। शोक अदाएं, चंचल निगाहें और मन की अनकहीं हलचल, इन्हीं को बड़े सलीके

से इस गीत में स्वर मिले हैं। आशा भोसले का ये लोकप्रिय गीत अपने मधुर संगीत और दिलकश अभिव्यक्ति के कारण आज भी श्रोताओं के बीच उतना ही प्रिय है। इसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, गीतकार हैं राजा मेहंदिया अली खां और संगीत मदन मोहन का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशु भोसले की आवाज में वो कौन थी फिल्म का गीत, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत। खड्ग सिंह छोंकर एडवोकेट कन्हैया लाल वर्मा प्रकाश नगर मथुरा से जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नजरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवश्री, मेघा राशि और अनुराग मोहन। फजल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यर्षिका, विद्या देवी और सारा मायल। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण लव्या और एस के पप्पी। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कंगवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्ध कंगवासरा। नांद्रा के श्रोता हैं धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा।

कोमल, समाधान भातुरकर और शुभम राउत कुमार रुद्र राउत इनके साथ सुन रहे हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहान और सरेहान खान। चोड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम कुमार, सोनम वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्निजा, पूनम गुग्निजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगा सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रिश्ता। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और दिलीप येमेकर। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें लोक जीवन की सादगी, भारतीय संस्कृति की सुगंध और संगीत की मधुरता एक साथ झलकती है। ऐसा ही एक गीत अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस गीत को अपने मधुर स्वरों से अमर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सजाया है। गीत के बोल हैं प्रसिद्ध गीतकार रविंद्र जैन और इसका मधुर संगीत भी उन्होंने स्वयं ही तैयार किया है। तो आइए सुनते हैं लोक रस और मधुर धुनों का ये अद्भुत संगम, मनभावन गीत अनारदाना।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे हिना फिल्म का यह गीत। रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत था और संगीत भी इन्हीं का था।

कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका, पुनावले पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवनी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार और अर्जुना कुमार, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, सांगली के श्रोता हैं हनुमंत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा, बठिंडा पंजाब से परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू, संगीता, महक, सुनीता, आरजू और इनके ढेर सारे साथीगण, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, पलेरा छत्तीसगढ़ से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोना

अली सोनम और आशीष, पेंटर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, सिया और इनके ढेर सारे साथीगण। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का संदेश में मिला है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम और नजमुल होदा गुमला झारखंड के श्रोता हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अबासी, निगाहत परवीन अबासी, शहनवाज, सरफराज, सफरदीन, सुहान, अर्जा, नबान और इनके परिवारजन। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, किशोरी धान खुराना। गांव खोखरा वाली, श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास और रोशनी बारासा। औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। गांधी पार्क मनपुरा, शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, मासूम नामदेव, ममता और रेखा नामदेव। सनावद मध्य प्रदेश से जुड़े हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टीडी मल्होत्रा। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव। और इसी क्रम में हम शामिल कर रहे हैं एक और संदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें मिला है विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा। श्रोताओ, कभी कभी प्रेम अपनी पूरी बात शब्दों में नहीं बल्कि अधूरेपन की मधुर अनुभूति में कह जाता है। आधा चांद, आधी रात और दो धड़कते दिल, यही तो है गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती। जो अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, कवि भरत व्यास के भावपूर्ण शब्द, श्री रामचंद्र का मधुर संगीत, आइए सुनते हैं फिल्म नवरंग का ये युगल गीत।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले के युगल सुरों में अभी आप सुन रहे थे नवरंग फिल्म का गीत। भरत व्यास की रचना थी, सी रामचंद्र का संगीत निर्देशन था। झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और इनके परिवारजनों का संदेश में मिला है। पंजाब के श्रोता हैं हरजिंदर सिंधा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से जुड़े हैं। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से, उज्जैन मध्य प्रदेश से, भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया, रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रियाफत, रिफाकत मोहम्मद अरिवान, सामरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड के श्रोता हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से किशन शपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज और विशाल, झुमरी तिरैया पीहरा बाजार की श्रोता, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, गुड्डू कुमार, रिम्मी, तन्नुषी, जिया टिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध और इनके बहुत सारे साथीगण। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, औसा लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानूश, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, राम सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, अशोक बब्बर, पवन और राजेश बब्बर, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप।

शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। कविता प्रजापति, विवेक प्रजापति, कंचन, ऋतिक प्रजापति, राघव, मासूम मोहाली मथुरा से। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। अकूट के श्रोता हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन और के संजीव डाबीराव। सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जू और नव्या बिजारनिया सरसा हरियाणा के श्रोता हैं। बठिंडा पंजाब से परमिंदर सिंह, सोनी, करण, रानोदीप, वीरपाल, कुलदीप। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, अयान और आलिया। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। सहारनपुर से जॉन टिकैस्ट्रो, रॉजी टिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस टिकैस्ट्रो। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता और गौरव सैनी। और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या निवेश और नियति कुमारी। श्रोतो, जीवन की राहें अक्सर अनजान होती हैं। कौन, कब और कहां हमारा हम सफर मिल जाए, ये कोई नहीं जानता। कभी एक आकस्मिक मुलाकात जीवन भर की याद बन जाती है, तो कभी बिछड़ने के बाद भी उसकी आहट दिल की धड़कनों में बनी रहती है। ऐसे ही कोमल एहसासों को शब्दों और सुरों में ढालता कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, आवाज लता मंगेशकर की पाकिजा फिल्म के लिए कैफी आजमी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे कैफी आज़मी और संगीत गुलाब मोहम्मद का था। इस गीत के साथ ही नवरंग कार्यक्रम अब अपने सफ़र को यहीं पूरा करता है। आप अपनी पसंद के फिल्मी गीतों की फरमाइश, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे अगले कार्यक्रम के लिए अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम नवरंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 2810003। आपके पत्र आपके संदेश हमारे कार्यक्रम की असली पहचान है। अगली प्रस्तुति में फिर मिलेंगे कुछ नई फरमाइशों, कुछ नई यादों और सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अरविंद को इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों और फॉर्म पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम नवरंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुगम संगीत, आइए आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान की गाई चंदन गजलें।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील चौहान की गाई चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान की गाई गजलें। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुखवीर सिंह निम्बार की गाई कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुखवीर सिंह निम्बार के गए कुछ भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों की शहनाई वादन। राग है केदार।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों का शहनाई वादन राग था केदार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे

0: बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।